एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल

0: ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।

जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य, सत्य और करुणा का साथ न छोड़ें। जब मन अशांत हो तब ईश्वर का स्मरण, प्रार्थना और अच्छे कर्म हमें सही मार्ग दिखाते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव ही सच्ची पूजा है। यदि हम अपने व्यवहार में ईमानदारी, विनम्रता और क्षमा को अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा और समाज में भी सद्भाव बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने विचारों, वाणी और कर्म को सदैव पवित्र रखना चाहिए और मानवता की सेवा को ही अपना धर्म मानना चाहिए।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर के मनन से करते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 131।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप

शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ, संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ वाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

श्री रामचरित मानस गान आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:10 का समय है। कार्यक्रम सुबह सुहानी का कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के बारे में और नेशनल लॉजिस्टिक्स डे के बारे में। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:40 पर और सुबह 8:30 पर। आनंद उठाइए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने में।

0: स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9 बजे। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय होगा मधुमेह रोग के कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता। और श्रोता उनसे जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो का फ़ोन नंबर डायल कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर है 01892224391। सुबह 10 बजे सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों का कारवां, और हिमाचली गीत और लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे पहाड़ों के सुर इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर। 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर, 10:45 पर, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे और दोपहर 12:30 का समय है बच्चों के कार्यक्रम बाल सभा का। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर और शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। शामी गजल इस कार्यक्रम में गजलें सुनिएगा शाम 6:05 पर और शाम 6:30 का समय है कार्यक्रम मिंजरा का। खेतीबाड़ी कार्यक्रम शाम 7:10 पर प्रसारित किया जाएगा। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात 8 बजे और रात 8:30 पर सुनिएगा देशकान। हिम बीट्स कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। और रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में सत्येन बोस की निर्मित निर्देशित फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर और रविवासरीय संगीत सभा रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: शुभवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तम संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयम् हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रियविषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधान

0: केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय समवाय विशेषान भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधे सीईटीए इत्यस्यांतर्गतम उदयोन्मुखावसरान सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के

0: सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदा योकिमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving health care tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members.

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना के साथ। जी दोस्तों, नई सुबह, नई उम्मीदें और नई ऊर्जा के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी, और अगर अभी अभी आपकी आंख खुली है तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और आज की सुबह को और भी यादगार बनाते हैं कुछ जानकारियों के साथ और कुछ मधुर संगीत के साथ।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के विचार की। जी श्रोताओं, सफलता भाग्य से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और सही सोच से मिलती है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। और यदि हम छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीख लें तो जीवन और भी सुंदर बन जाता है। याद रखिए, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का सही निर्णय आने वाले कल को बेहतर बना सकता है।

जी श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म आराधना से, और संगीत का यह खूबसूरत सफर अब यहीं नहीं रुकता है। इस सफर में आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का, ताकि आपकी सुबह रहे सुरों के साथ साथ जानकारी से भी भरपूर। तो चलिए बात करते हैं आज विशेष की। साल 1919 से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आज ही के दिन बरसात शांति संधि पर दस्तखत के साथ ही आज के दिन पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ। जर्मनी के प्रतिनिधियों ने विजेता देशों द्वारा पेश संधि पर विरोध जताते हुए हस्ताक्षर किए, और ब्रिटिश भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले सर हेनरी जी डब्ल्यू स्मिथ का जन्म हुआ 28 जून सन 1787 को। आज ही के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का निधन हुआ साल 2012 में, और प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म साल 1976 में, और मरियप्पन थंगाबेलू का जन्म साल 1995 में हुआ 28 जून के दिन, और वे भारत की ऊंची कूद की खिलाड़ी हैं। साल 1838 की बात करें तो आज ही के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। वे भारत के महान उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे, और उन्हें साहित्य सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, और उनकी रचित अमर कृति वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का और आज के समय हमारा भी प्रेरणा स्रोत है।

जी श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी, और कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज विशेष की। तो अगली जानकारी के बारे में आपको बताते हैं, नाना साहब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया 28 जून सन 1857 को, और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। इसी के साथ साल 1940 में आज ही के दिन बांग्लादेश अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर यूनस का जन्म हुआ, और साल 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू की थी आज ही के दिन यानी कि 28 जून को। साल 1981 में चीन ने कैलाश मानसरोवर का रास्ता खोला, और बाघों को शिकारियों से बचाने और उन्हें आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया 28 जून सन 1995 को। और आज ही के दिन तुर्की के इंस्ताबुल में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो द्वारा 17वां शिखर सम्मेलन 2004 में शुरू हुआ था। और श्रोताओ, जानकारियों का ये सिलसिला जो है वो हमें समय के साथ जुड़े रखता है, लेकिन संगीत जो है वो हमारे मन को सुकून देता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

जी श्रोताओं, उम्मीद है कि लता मंगेशकर की इस खूबसूरत सी आवाज़ में, इस खूबसूरत गीत ने आपकी सुबह को और भी सुरीला बना दिया होगा। और एक बार फिर से संगीत से थोड़ा सा विराम और रुख करते हैं अगली जानकारी की तरफ। श्रोताओं, भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था 28 जून सन 1921 को, और उनका पूरा नाम था पामूला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव। दक्षिण भारत से इस पद को संभालने वाले वे पहले व्यक्ति थे और उन्होंने विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला था। उन्होंने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की, जिससे भारत में लाइसेंस राज का अंत हुआ और इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना में भी उनकी मुख्य भूमिका रही और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया उन्होंने। इसके साथ ही वे 10 से अधिक भाषाओं को जानते थे और उन्होंने कई लेख और पुस्तकें भी लिखी। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक और भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है और साल 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि श्रोताओ, आज है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस और ये दिन वर्तमान बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करने के लिए एक रिमाइंडर का काम करता है और इसके साथ ही ये हमें बताता है कि आपात स्थितियों में सही बीमा का कितना महत्व है। इसी के साथ आज है नेशनल लॉजिस्टिक्स डे और ये दिन बताता है कि किसी भी देश के विकास और व्यापार में ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की भूमिका कितनी अहम होती है, और ये दिन इसी जटिल नेटवर्क को मान्यता देता है।

फिल्म का नाम दो बूंद पानी और इस गीत में आवाज़ें थी परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की। और श्रोताओ, एक बार फिर से कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सबका स्वागत है और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। और अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राजकीय यात्रा पर हैं और वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही देश भर में बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में भी ये अभियान आयोजित किया जा रहा है और 28 जून यानी आज 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए प्रदेश भर में 4,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही सोलन में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध शूलनी मेला संपन्न हो गया है, जिसे लेकर प्रशासन और मंत्री धनीराम शांडिल ने सफल आयोजन की जानकारी दी है। और जापान के होनशू के पूर्वी तट पर आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार के सूचना दी है और इसके साथ ही बाकी क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रहेगा।

0: जी श्रोताओं, फिलहाल जानकारियों और मनोरंजन का ये सिलसिला बस यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला और मुझे यानी कि वंदना रैना को दीजिए अनुमति। और हमारे केंद्र से हर सुबह होती है जानकारी, संगीत और सकारात्मक सोच के साथ। तो आप सभी को नमस्कार और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।
1: सुबह सुहानी।
0: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा मधुमेह रोग के कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता, और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए श्रोता कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 01892224391 पर। और श्रोता लीजिए, अब सुनिए ये देश गान।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने

0: स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए

0: बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत के विकास में की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बरसात से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।
1: ये पूछे
2: क्या

कार्यक्रम में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दीवाना फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला बेहद खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना और इस गीत में आवाजें हैं शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म परदेश से कुमार सानू की आवाज में।

और श्रोता लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, तेरे नाम फिल्म से। ये गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं और ये समय है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा टाइप 1 मधुमेह रोग के कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता। तो चलिए उनसे बात करते हैं और विषय के संबंध में उनसे जानकारी हासिल करते हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आरोग्यम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी श्रोताओं, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ये शब्द सुनते ही एकदम से हमारे दिमाग में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मधुमेह या डायबिटीज ऐसी भी है जो सीधे मासूम बच्चों और युवाओं पर हमला करती है और रातों रात हंसते खेलते बच्चों की जिंदगी सुइयों और ब्लड टेस्ट के बीच में सिमट जाती है। जी हाँ, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। और आज का हमारा कार्यक्रम उन बहादुर बच्चों और उनके परिवार की लड़ाई को समझने की कोशिश है कि किस तरह से इस बीमारी के साथ भी बच्चे सामान्य और शानदार जिंदगी जी सकते हैं। और टाइप 1 मधुमेह के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, जो कि बच्चों के हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं और इसके साथ ही सह प्राध्यापक भी हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद आपका, और मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
0: जी डॉक्टर साहब, तो सीधा विषय पर आते हैं, तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि टाइप 1 मधुमेह है क्या?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ एक छोटे बच्चों का रोग है। इस रोग में जो हमारी प्रणाली है शरीर की
0: जी,
1: उसमें एक छोटा सा त्रुटि आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों में वो इतने इस हद तक डैमेज हो जाते हैं कि उनके शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से जब बीटा सेल्स नहीं रहते शरीर में तो शुगर

0: का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं।
1: जी सर, और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से भिन्न है?
0: टाइप 1 और टाइप 2 में एक तो एज का डिफरेंस है।
1: जी
0: जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर बच्चों में या हमारे अडोलेसेंट एज ग्रुप जो 18 साल तक है उसमें पाई जाती है।
1: जी जी
0: ऑल तो टाइप 1 डायबिटीज़ बाद में भी डेवलप होती है कुछ लोगों में,
1: जी
0: लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बच्चों में ये पाई जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें एक क्रॉस डिफरेंस है कि वो ज़्यादातर बड़े लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है।
1: जी
0: इसीलिए जब हम कोई पूछता है कि जब हम कहते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो गई
1: हाँ जी
0: तो लोगों को या पेशेंट्स के पेरेंट को भी एक शॉक लगता है कि क्या बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है।
1: जी बिल्कुल सही है
0: लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ है।
1: जी
0: और इसमें एक बात और भी है कि जैसे इसमें इंसुलिन नहीं होती शरीर
1: जी
0: में, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होती है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है।
1: जी तो सर, जैसा कि आपने कहा कि इसमें इंसुलिन नहीं होती है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन बनाना बंद क्यों कर देता है?
0: देखिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है, तो हमारे बीटा सेल्स होते हैं जो पेनक्रियास के अंदर होते हैं और वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं।
1: जी
0: लेकिन जैसे ऑटो इम्यूनिटी होती है जिसमें शरीर स्वयं अपने सेल्स को ख़त्म कर देता है,
1: जी
0: इस वजह से क्या होता है, जो ऑटो इम्यूनिटी ये डेवलप होती है इस वजह से वो बीटा सेल्स को टारगेट करती है और धीरे धीरे शरीर से बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक सा सेल है हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा शरीर में इंसुलिन कहीं और से प्रोड्यूस नहीं होती है।
1: जी
0: तो इसके डिस्ट्रक्शन से जो है शरीर में इंसुलिन की भारी कमी हो जाती है, और जब इसका लेवल जो है 90% के आसपास जब सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लग पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन की भारी कमी होने से शरीर शुगर के लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाता बॉडी में।
1: जी और सर एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जैसे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उन्होंने अभी अपना जीवन शुरू ही किया होता है, इतना ज़्यादा बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे कोई जेनेटिक कारण है कि माता पिता को अगर ये बीमारी है तब ये बच्चों को भी हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या?
0: इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम कहते हैं कि हैं,
1: जी
0: इसमें जेनेटिक फैक्टर्स का भी रोल है।
1: जी
0: जैसे फादर को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है और अर्ली ऑनसेट है तो बच्चों में 4% बच्चों में हो सकता है कि ये चीज़ हो,
1: जी
0: ऐसा नहीं कि सब में हो, है ना।
1: जी
0: तो उसी तरह से अगर माँ को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हार्डली 1.5 से 3% के बीच में चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होगी।
1: जी
0: अब आता है क्वेश्चन कि जब दोनों सिबलिंग्स यानी ट्विन्स हैं
1: जी
0: तो एक ट्विन को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो दूसरे ट्विन को 40% चांसेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होने के,
1: जी
0: और अगर वो अलग अलग ट्विन्स हैं तो उसमें चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
1: जी और सर एक श्रोता जो है वो काफी देर से हमें कॉल कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बता दें।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटाई से।
1: जी राकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जी तो मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि अगर जैसे डायबिटीज बच्चों में और बुजुर्गों में होता है, तो इसके लिए हमें किस तरह से भी है बचाव करना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये डायबिटीज और मधुमेह के कारण बचाव किस तरह से करना चाहिए?
0: देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका
2: जी
0: कारण तो हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें आप इसको रोक नहीं सकते,
2: जी
0: ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो बीटा सेल्स जो इंसुलिन जो आ रही है तो बीटा
2: जी
0: सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो नेचुरली वो इंसुलिन बनता ही नहीं बॉडी में,
2: जी
0: तो इससे एज सच बचाव नहीं कर सकते। बट हाँ कुछ फैक्टर्स
2: जी
0: हैं जैसे एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज वगैरह रहती हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एलर्जी किस चीज़ से है या किस चीज़ से उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। अगर हम उन चीज़ों को थोड़ा सा रोक सकें तो शायद इस बीमारी में मतलब इसको हल्का सा रोक सकते हैं। लेकिन
2: जी
0: टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अडल्ट्स में जो होती है उसका ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा खान पीन और एक्सरसाइज कम करने की वजह माना जाता है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ की

0: रोकथाम के लिए जिसे हम कहते हैं कि रोज व्यायाम करना चाहिए, और आपका जो डाइट है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खा के अगर शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो टाइप टू डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: जी। और राकेश जी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहिए। और सर, आपने जैसा बताया टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो क्योंकि हम इतने छोटे बच्चों में ये सोच ही नहीं सकते कि उनको भी मधुमेह की बीमारी हो सकती है, तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए वो लक्षण देख के, और उन्हें लगना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर उसे चेक करवाना है।
0: देखिए, हम सही शब्दों में ये चीज़ जो पूरे अपने कांगड़ा और बाकी पूरे जिले के लोगों को बताना चाहेंगे कि
1: जी
0: ये अवेयरनेस पेरेंट्स को होनी चाहिए। बच्चा अगर साथ में रहे उनके
1: हाँ जी
0: तो 3 सिम्टम्स जो हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, पॉली यूरिया यानी बार बार पेशाब होना,
1: जी
0: पॉलीडिप्सिया बार बार बच्चे को प्यास लगना, इवन रात को उठ उठ के बच्चा जो है वो पानी मांगता है या पीता है, और रात को मल्टीपल टाइम्स उठ के पेशाब जाता है, और तीसरा है पॉलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो बच्चा जो है खाना दिन में तो खा ही रहा है लेकिन रात को भी उठ के खाना मांगता है। और पेरेंट्स एक चीज़ अगर नोटिस करें और ऑब्जर्वेंट हों कि बच्चा खाना तो बहुत ज़्यादा खा रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा, उल्टा वो
1: जी
0: कमज़ोर होता जा रहा है।
1: ओके जी
0: और चौथा जो है उसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, कि पहले वो बहुत ज़्यादा खेलता था या जो भी था उसका जो उसका शेड्यूल था, लेकिन अब वो इतना थका थका रहता है कि अपने छोटे छोटे काम भी उसको करना ऐसे लगता है कि भारी चीज़ है।
1: जी
0: तो इस कंडीशन में, इन चारों कंडीशंस में कोई भी चीज़ जो पेरेंट्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसे डेफिनेटली उस बच्चे को उन्हें दिखाना चाहिए।
1: जी और सर, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप OPD भी आपकी होती है मेडिकल कॉलेज टांडा में, तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे माता पिता भी आते होंगे, तो जब आप किसी को बताते हैं कि उनके बच्चे को ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है, तो ऐसे में उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या रहती है?
0: देखिए, बच्चों में डायबिटीज़ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स के लिए
1: जी
0: भी ये चीज़ समझना, और दूसरा ऐसा है कि उनको इस चीज़ से आगाह करना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं,
1: जी
0: तो एक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क बन जाता है कि हम ये पेरेंट्स को पहले तो बिलीव ही नहीं होता कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गई है।
1: जी मानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारा
0: हाँ
1: बच्चा भी बीमार हो सकता
0: बिल्कुल।
1: है। जी
0: तो लेकिन हम धीरे धीरे उन्हें, जब भी किसी बच्चे को हम डायग्नोस करते हैं तो हम उसको 7 दिन के लिए अपने पास एडमिट करते हैं।
1: जी
0: इन 7 दिनों में हमने एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए।
1: जी
0: तो बहुत छोटे बच्चे तो नेचुरली वो तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन 6-7 साल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। और 7 दिनों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो हम DSME बोलते हैं, डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, तो हम उनको सेल्फ मैनेजमेंट सिखाना चाहते हैं क्योंकि एक क्रॉनिक बीमारी है। अब बच्चे का शुगर 4 से 5 बार रोज चेक होता है।
1: अच्छा
0: इस कंडीशन में कभी शुगर ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, तो अगर हम पेरेंट्स को सिखाएंगे नहीं तो वो बार बार अस्पताल की तरफ भागते रहेंगे।
1: बिल्कुल, पैनिक भी कर जाते हैं क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: बच्चों के मामले में पेरेंट्स थोड़ा सेंसिटिव होते हैं ना।
0: हाँ डेफिनेटली। तो हम उनको इन 7 दिनों में इस तरह से ट्रेन करके जाते हैं कि वो बीमारी से डरे ना, और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस के साथ साथ वो बच्चों का ख्याल घर में अपने आप रख सकें।
1: जी सर, एक श्रोता लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो
2: हाँ जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, हृदय तारा 36।
1: हेलो,
2: हेलो।
1: हाँ जी अपना नाम बता दें।
2: हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, 36।
1: जी योगेश जी, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं?
2: हाँ जी, मोबाइल ऐप पे सुन रहे
1: जी जी
2: हैं।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे सामने, तो अपना प्रश्न कीजिए।
2: हम ये जानना चाहते हैं, बच्चों में जैसे पेशाब बार बार आने की शिकायत करते हैं, तो क्या ये भी उनका कोई लक्षण या कारण है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, ये लक्षण जो है अगर इस तरह से आ रहा है, मान लीजिए बच्चा शाम को या रात को 4-5 बार पेशाब करने जा रहा है, और हर बार जब पेशाब करता है तो भारी मात्रा में करता है और बिल्कुल क्लियर पानी की तरह वो पेशाब कर रहा है, जबकि पानी वो इतना ज़्यादा नहीं पी रहा है, ठीक है, तो अगर ये इस तरह से हो रहा है तो एक लक्षण इसको माना जाता है। और इसमें एक बहुत सिंपल सा काम करना होता है, एक शुगर टेस्ट कराना होता है बच्चे का,
2: जी
0: तो उसी से आइडिया लग जाता है कि क्या इसको डायबिटीज़ है या नहीं है।
2: डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
0: हाँ, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, पेशाब ज़्यादा करने के और भी कारण होते हैं, लेकिन इस बीमारी का एक लक्षण ये है।
2: अच्छा जी, धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चा बार बार पेशाब करने जाता है, तो कई बार कई छोटे बच्चे होते हैं उनको बेड वेटिंग की आदत भी होती है, तो माँ बाप उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे में
0: सही।
1: उनको क्या समझना चाहिए कि जैसे बिस्तर गीला कर रहा है वो सामान्य है या ये मधुमेह है टाइप 1?
0: देखिए, जो बिस्तर गीला करते हैं बच्चे,
1: जी
0: तो अगर आप नोटिस करेंगे तो रात को बच्चा एक आध बार ऐसे करता है, लेकिन अगर वही बच्चा जो है हर 3-4 घंटे में ये चीज़ प्रक्रिया कर रहा है, या फिर वो 2-3 बार रात को उठ के पेशाब जा रहा है और उसके बावजूद भी बिस्तर गीला कर रहा है,
1: जी
0: तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि उसका यूरिन की क्वांटिटी और वॉल्यूम डेफिनेटली ज़्यादा है। तो अगर वो इस तरह से कर रहा है तो इसका टेस्ट हमें करके कंफर्म इसको करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है।
1: जी और सर, जैसा कि आप बार बार टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं आप जब बच्चे आपके पास इस समस्या के साथ आते हैं तो?
0: हमारे बड़े सिंपल से टेस्ट रहते हैं।
1: जी
0: हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि शुगर रिकॉर्ड जो हैं बच्चे के कैसे हैं, तो हम एक 7-पॉइंट प्रोफाइल प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। उसमें हम प्री फूड, प्री मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले क्या शुगर है, और पोस्ट मील्स यानी 2 घंटे के बाद उसकी शुगर्स कैसी रहती खाना खाने के, तो अगर ये चीज़ 200 से ज़्यादा आ रही है तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये फिट होता है। नंबर 2 है, हम ये जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, अगर 126 से ज़्यादा जा रहा है उसका, या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ऊपर है शुगर्स, तो ये डेफिनेट इंडिकेटर्स हैं कि ये डायबिटीज़ की तरफ है।
1: जी
0: इसकी कंफर्मेशन के लिए हम फिर HbA1c का टेस्ट करते हैं, अगर वो 6.5 से ज़्यादा आता है तो ये कंफर्मेशन क्लियर हो जाती है कि बच्चे को डायबिटीज़ है।
1: जी सर, और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर माना कि पेरेंट्स इतने अलर्ट नहीं हैं, वो बच्चों की बिस्तर गीला करने की आदत या फिर बार बार भूख लगने की आदत उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे में अगर सही समय पर हम इस बीमारी की पहचान ना करें तो बाद में कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या सर?
0: डेफिनेटली ये जो एक टर्मिनोलॉजी है हमारी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस,
1: ओके
0: तो जब आज से 3-4 साल पहले हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चे आते थे टांडा में,
1: जी
0: वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के साथ आते थे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का सांस तेज हो जाता है, बेहोशी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड बच्चा लगता है।
1: जी
0: तो इस कंडीशन को भी डायग्नोज करने के लिए हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो ट्रेंड होते हैं, बट जनरल पब्लिक जो है या जनरल डॉक्टर्स जो हैं, छोटे बच्चे में इस तरह की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते
1: जी
0: और पेरेंट्स तो शायद बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसीलिए जो ये वाले बच्चे हैं इनको जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है तो एक जानलेवा कंडीशन होती है। तो अब जो 4 साल जो हम टांडा में ये चीज़ हम काम जो करते हैं और पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, तो अब हमारे पास कुछ बच्चे इस तरह से आना शुरू हो गए हैं जिनकी शुगर पेरेंट्स ने चेक कराई 200 से ज़्यादा ही, तो फटाफट हमारे पास आ गए, तो वो बच्चे डीके में नहीं जाते।
1: जी
0: सो डीके की मैनेजमेंट करने के लिए हमें बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और करीब 4-5 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं।
1: अच्छा आते हैं।
0: और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस जानलेवा कंडीशन से ग्रसित होके कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है।
1: ओह अच्छा,
0: तो ये अवेयरनेस जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सभी को बताना चाहते हैं
1: जी
0: कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन किसी को भी लगता है कि शुगर जो है 200 से ज़्यादा है बच्चे की, तो बेटर है, और इस तरह के सिम्टम्स जैसा हमने डिस्क्राइब
1: जी
0: किया, इस
1: जी
0: तरह से
1: जी
0: कुछ है, तो इस सबसे बढ़िया ये रहेगा कि वो आके दिखाएं या अपने नियर बाई डॉक्टर को एटलीस्ट चेक कराएं, ताकि टाइम से बच्चा हॉस्पिटल पहुंचे और हम उसका इलाज शुरू कर सकें और इस जानलेवा कंडीशन से उसकी जान बच सके।
1: जी सर, और सर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में यूं ही बने रहिए, और श्रोता हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आरोग्यम अब आप सुनेंगे 9:30 पर, थोड़ी ही देर में यानी कि 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में आज 5 वर्ष की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज होगा समापन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे शिरकत। चंबा के चुराह उपमंडल में एक निजी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना, भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान में हो रही कारगर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: 3 दिवसीय राष्ट्रीय शूलिनी मेला आज संपन्न होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गायकों के नाम रही। संध्या में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। गायक राजेश त्यागी, बीरबल किनौरा, अंजू तोमर और अंकुश भारद्वाज ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं इस अवसर पर ऐतिहासिक ठोडा प्रतियोगिता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से लोगों की सड़क निर्माण से जुड़ी वर्षों पुरानी मांगें पूरी हो रही हैं।
2: आज दिशा कमेटी की बैठक जिला चंबा की मैंने रखी थी। इस बैठक में करीब करीब 28 विभाग

0: संस्थाओं की मॉनिटरिंग होती है। ये वो 28 विभाग है जहां केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र की ओर से धन उपलब्ध किया जाता है। जो केंद्र की ओर से इन योजनाओं में फंडिंग होती है उसमें हमारी जिला का प्रशासन भी और हमारे जितने विभाग हैं इस योजना के तहत उन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी और उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में लगे हैं और जितनी फंडिंग आती है उसको 100% चंबा जिला में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं।
1: चंबा जिला के चुराह उपमंडल के नकरोड़ हिमगिरी सड़क मार्ग पर एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार ये हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य जारी है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि शहीद सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं और इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भेड़ों की बेहतर नस्ल विकसित कर ऊन व मांस उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भेड़ पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित रैम नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले के कुल 30 पात्र भेड़ पालकों को योजना का लाभ मिलेगा। किन्नौर जैसे जनजातीय जिले में भेड़ पालन लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में यह योजना केवल पशुपालकों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि जिले की समृद्ध संस्कृति विरासत पारंपरिक पहनावे और स्थानीय हस्तशिल्प को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: कुल्लू जिला प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित कर दिया है। उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तहत ये निर्णय लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मॉनसून पूर्व भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जल स्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और व्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। इधर सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह के चलते नाथपा स्थित NJHPS प्रबंधन ने आज सुबह 7 बजे से डैम के रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 145 क्यूमैक्स पानी छोड़े जाने की सूचना जारी की है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा।

0: दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मॉनसून जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। स्पीति हिमालयन बौद्ध स्मृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग की परिकल्पना रखा गया है। आयोजन का समापन 6 जुलाई को करुणा दिवस और 14 जुलाई को दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस समारोह के साथ होगा। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सामाजिक मूल्यों के प्रसार और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, कृषि ऋण के ब्याज पर 50% अनुदान देगी सरकार, 6,356 किसानों को मिलेगा लाभ। पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक के मुताबिक 3 लाख तक के बकाया कृषि ऋणों पर 50% ब्याज देगी सरकार। दिव्य हिमाचल व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है, बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1,500 रुपये। दैनिक जागरण लिखता है, हिमाचल में सरिया और इथेनॉल के नए उद्योगों पर लगी रोक। अमर उजाला की सुर्खी है, 10 जुलाई से शुरू होने वाली शिखंड यात्रा स्थगित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में आज 5 वर्ष की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेले का आज होगा समापन, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे शिरकत। चंबा के चुराह उपमंडल में एक निजी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना, भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान में हो रही कारगर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 10:45 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य।
4: फरमाटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
7: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी श्रोताओ, कार्यक्रम आरोग्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ वंदना रैना आज इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं बच्चों के हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता, जो कि हमें टाइप 1 डायबिटीज के बारे में आज कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं। हेलो।
8: हेलो, नमस्कार मैम।
3: जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए।
8: दीपिका धर्मशाला से बोल रही हूँ मैम।
3: हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
8: सर नमस्कार।
9: नमस्कार।
8: हाँ सर, मेरा बेटा है 16 साल का ना, उसको एलर्जी रहती है बहुत ज्यादा, छिक्की वगैरह आती है बहुत ज्यादा ना। मैं करती हूँ, घर की सफाई भी काफी रहती है, धूप भी रहती है रूम में, फिर उसको छिक्की आती है। सर क्या कारण हो सकता है इसका?
3: जी, ये प्रश्न जो है ये तो टोटली डिफरेंट आपने पूछ लिया। और आज हमारा जो विषय है, हम बात कर रहे हैं बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के बारे में। जी जी, तो आप इसके बारे में, आप जो बच्चों के डॉक्टर हैं ना, उनके पास जाके आप अपने बेटे को या बेटी को जो भी है उनको दिखा सकते हैं, है ना?

0: जी सर, तो हम जैसा कार्यक्रम में बात कर रहे हैं टाइप 1 मधुमेह के बारे में, तो अब एक प्रश्न ये आता है कि अगर किसी बच्चे को ये रोग हो गया है तो ऐसे में क्या वो एक सामान्य जीवन बिता सकता है जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह खेल कूद कर सकता है, या फिर पढ़ाई में भी बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह स्कूल जा सकता है, सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर सकता है?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस बीमारी में हम जो पढ़ाते हैं पेरेंट्स को और बच्चे को, तो हमारे हिसाब से बच्चे को हर एक्टिविटी में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
0: जी
1: उसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी को टैकल कर सके।
0: जी
1: और हम इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। तो जनरली हमने ये देखा है कि जो बच्चे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझ जाते हैं
0: जी
1: वो लाइफ में उसी तरह से आगे चलते हैं।
0: जी
1: इसके मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ
0: जी सर,
1: स्पोर्ट्स
0: माफ
1: के।
0: कीजिए सर, एक श्रोता लाइन
1: ओके
0: पे
1: हेलो,
0: हैं। हेलो जी, मैम अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम पलक है।
0: जी पलक, हाँ जी।
2: मुझे इंसुलिन पंप लगा है,
0: जी
2: तो वो काम मतलब करना बंद कर दे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जी सर,
1: पलक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो इंसुलिन पंप्स हैं, ये बेसिकली आपके मोबाइल से भी बेहतर डिवाइस है एक तरह से। तो इसको इसीलिए मार्केट में लाया गया है कि ये एक तरह से बिल्कुल ठीक ठाक काम करे और कोई प्रॉब्लम ना करे। लेकिन फिर भी हाँ, ये पंप अगर किसी वजह से काम करना बंद कर दे, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बैटरी का ख़त्म होना या किसी और वजह से पंप का अचानक बंद हो जाना, और आपको पता लग जाता है इस चीज़ का कि ये पंप जो है काम नहीं कर रहा है, आपके शुगर रिकॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो आप
2: हाँ
1: इसको
2: जी
1: एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो, पहली चीज़ है ना। अगर आप
2: हाँ
1: फिर भी इसको रीस्टार्ट नहीं कर पाते हो, तो इसको रिमूव करके आप दोबारा से अपना जो इंसुलिन का जो प्रोटोकॉल है उसको आप फिर से फॉलो करें। जैसे पहले आप किसी पेन डिवाइस या फिर आप इंसुलिन सिरिंज से लगाते हो, तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें जब तक कि उस पंप को वेरीफाई ना किया जाए कि वो वाकई काम कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें।
2: हाँ जी सर।
0: ठीक है, और कुछ पूछना है आपको पलक?
2: हाँ जी सर, मुझे जो इंसुलिन पंप मिला है उसके लिए हमें जो हमें इंसुलिन मिलते हैं अंदर से, कुछ टाइम पहले हमें वो भी नहीं मिल रहे थे, हमें महीना महीना एडमिट होना पड़ता है। अगर कई स्टूडेंट होते हैं, मैं भी स्टडी कर रही हूँ इस वक्त, तो बार बार मैं भी एडमिट नहीं हो सकती हूँ, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए?
1: हाँ देखिए, पहले जो आप लोगों को हमने इंसुलिन जो फ्री में हमने कोशिश की थी कि आपको मिल जाए, अभी सरकार की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। इसके लिए हमारे टांडा के जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर मिलाप शर्मा, वो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हमारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं जिसमें इंसुलिन भी है और जिस तरह से बच्चों को मिल रही है, वो पहले की तरह अवेलेबल हो। तो हमें ये होप है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देगी। और जैसे पहले आप लोगों को हमने फ्री इंसुलिन का प्रावधान कर रखा था टांडा में, तो
2: हाँ
1: आगे
2: सर,
1: भी कोशिश यही है कि आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। और अभी जो है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में जो इंसुलिन है वो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब कोशिश यही रहेगी कि हम हर संभव तरीके से आपकी मदद कर सकें।
0: जी। और सर, एक चीज़ हम इनसे बात करने से पहले पूछ रहे थे कि क्या जो डायबिटीज़ 1 से पीड़ित बच्चे हैं वो नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, तो उस बारे में आप बता रहे थे?
1: देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं,
0: जी
1: तो इसमें 3 एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसमें है, अगर आप देखें क्रिकेटर्स में, तो जो वसीम अक्रम है,
0: जी
1: ही इज़
0: पाकिस्तान के
1: टाइप
0: क्रिकेटर हैं
1: पाकिस्तान के क्रिकेटर, ही
0: जी।
1: इज़ अ टाइप 1 डायबिटिक।
0: ओ ओके
1: एंड अगर हम उनका कैरियर प्रोग्रेशन देखें, तो ही
0: जी
1: हैज़ वर्कड वेरी वेल इन शेपिंग हिज कैरियर टू
0: जी
1: दिस एक्सटेंट कि वो एक क्रिकेटर बने।
0: जी जी
1: उसी तरह से एक हमारे गैरी हॉल जूनियर इज़ वन ऑफ द ओलंपिक स्विमर्स,
0: जी
1: ही इज़ ऑल्सो टाइप 1 डायबिटिक्स। और एक शर्लॉट है, एक वन ऑफ द जिमनास्ट, शी इज़ ऑल्सो टाइप 1 डायबिटीज, शी इज़ ऑल्सो एन ओलंपिक प्लेयर। सो बेसिकली ये जो 3 लोग हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं और आइकन्स हैं हमारे टाइप 1

0: डायबिटीज़ के बच्चों के लिए कि अगर ये सब इस लेवल तक स्पोर्ट्स में जा सकते हैं
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि ये लोग भी कर सकते हैं।
1: जी तो एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि हमें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, सही खान पान के साथ और थोड़ा सा अपना जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लाके हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ये मुझे लगता है इन बच्चों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इन्हें करना चाहिए।
1: जी सर। और सर एक चीज़ और ये आती है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो खाने पीने का परहेज़ होता है, तो ये जो आप बता रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़, तो इसमें बच्चों का खान पान सामान्य रहता है या बहुत सारी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ती हैं या ऐड ऑन करनी पड़ती हैं अपने खान पान में?
0: देखिए, हम किसी भी बीमारी का नाम लें, दुनिया में
1: जी
0: हर चीज़ खान पान पे ही आधारित है। किसी भी बीमारी को हम देखें तो उसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ में भी खान पान का एक सिस्टम है। हम इनको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो इनके शरीर में शुगर को एकदम बढ़ा दें, क्योंकि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
1: जी
0: तो ये बच्चे ऑलरेडी इंसुलिन पे होते हैं,
1: जी
0: अगर इनको कोई ऐसी चीज़ खानी है तो इन्हें अपनी इंसुलिन को निर्धारित करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर ये अपनी इंसुलिन को निर्धारित कर लेते हैं तो इन्हें खान पीन की समस्या का इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता।
1: जी
0: और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको उस तरह का डाइटरी सिस्टम बताएं खाने पीने का कि इनके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी वाइट ब्रेड है वो शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है,
1: बढ़ाती है।
0: जो ग्रेप्स हैं वो हमारे शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स जो हैं हमें अवॉइड करने हैं, इस तरह के फूड्स स्पेशली फास्ट फूड्स, तो उन्हें हमें इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि वो या जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये आपके शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह की चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल ना करें तो ये बच्चे एक नॉर्मल पैटर्न पे बहुत अच्छे से अपने जो मेंटेनेंस है खाने पीने का वो मेंटेन कर सकते हैं।
1: सर, आपने ब्रेड की बात की है ना, वाइट ब्रेड का तो आपने बता दिया कि उसमें शुगर लेवल जो एकदम बढ़ जाता है, लेकिन कई बार हमारे पास मार्केट में अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे ब्राउन ब्रेड होगी, मल्टीग्रेन ब्रेड होगी, तो ऐसे में क्या उनको हम खान पान में शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, जो क्लेम होता है
1: जी
0: कंपनीज़ का कि ये ब्राउन ब्रेड है इसमें
1: बिल्कुल
0: शुगर,
1: बिल्कुल
0: लेकिन कोई ये बताता नहीं कि शुगर कितनी है और
1: जी
0: वो कैसे बढ़ेगी।
1: जी जी
0: तो एक ना एक भ्रमित सा लोगों को किया जाता है।
1: जी
0: मेरे हिसाब से जो ब्रेड है वो ब्रेड ही है। अगर आप उसे
1: अच्छा
0: खाएंगे चाहे वो
1: जी
0: मल्टीग्रेन है या कोई और है,
1: जी
0: वो शुगर हो सकता है बहुत तेज़ी से ना बढ़ाए लेकिन बढ़ाएगी ज़रूर।
1: जी
0: तो जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है, जो हम सिंपल जो रोटी बनाते हैं,
1: जी
0: और मुझे लगता है उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इन बच्चों को भी शायद ये समझना चाहिए।
1: आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें जो घर की रसोई है उसी का रुख करना चाहिए, और
0: बिल्कुल,
1: भ्रामक जो विज्ञापन आते हैं टीवी पे,
0: हाँ
1: न्यूज़पेपर्स में या इंटरनेट पे आते हैं, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना?
0: बिल्कुल। और एक चीज़ और है, जब भी
1: जी
0: बच्चे कुछ खाते हैं, अब हम जो ट्रेनिंग देते हैं इन बच्चों को,
1: जी
0: तो हम इनको हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लेबल है उसको ज़रूर देखें।
1: जी
0: उससे आपको एकदम पता लग जाता है कि इसमें शुगर
1: जी
0: कंटेंट कितना है और क्या
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो उसी हिसाब से आप अपनी डाइट को रेगुलेट कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: और सर एक बात ये भी है कि जैसे आपने किसी बच्चे को बता दिया, आपके पास कोई पेरेंट्स आए अपने बच्चे को लेके, आपने बोल दिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको, तो कई बार पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, बच्चे को रोकना शुरू कर देते हैं, बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, खेल कूद ज़्यादा नहीं करने। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परिवार की क्या भूमिका रहती है, कि वो किस तरह बच्चे का जो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं?
0: देखिए, इसमें परिवार और सोशल जो
1: जी
0: हमारा सेटअप है,
1: जी
0: कोई भी आदमी हमारे सोसाइटी में बीमार होता है तो क्या होता है, सब लोग उसको देखने जाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है,
1: और जितने लोग उतनी राय वो
0: उतनी
1: भी ले।
0: राय।
1: हाँ जी
0: तो कई बार जो पेशेंट होता है वो भ्रमित हो जाता है कि उसको हर कोई अपनी राय दे जाता है
1: जी
0: और क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ।
1: बिल्कुल
0: तो हम इनको यही समझाते हैं कि जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है
1: जी
0: इसी को आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ और जो मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा, जो बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ से डायग्नोस्ड है उसकी लाइफ लाइन जो है वो इंसुलिन है।
1: जी
0: अगर आप इंसुलिन बंद करते हैं या स्किप करते हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा डीके की तरफ जाए।
1: जी सर। सर माफ़ी चाहेंगे, एक श्रोता है। हेलो
2: हेलो
1: जी मैम, अपना नाम बताइए।
2: जी मैम, मेरा नाम तमन्ना है।
1: जी जी तमन्ना जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न कीजिए डॉक्टर साहब से।
2: गुड मॉर्निंग सर.
0: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनमें एक बच्चा है जिसको 3 महीने का है वो, और उसको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है. तो इतने छोटे बच्चे में डायबिटीज होना इस एज में पॉसिबल है, और अगर होता है तो उसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं सर?
0: आपने एक बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चन को राइज किया है, तो इसका आंसर देते हैं. ऐसा है कि इस 6 महीने से नीचे अगर किसी बच्चे को शुगर हो जाए तो उसे हम नियोनेटल डायबिटीज मेलाइटस में क्लासिफाई करते हैं. 6 महीने से 12 महीने के बीच में भी कुछ बच्चों में डेवलप होती है, और इसके दो चीज़ें जो होती हैं, एक ट्रांजिएंट और एक परमानेंट. जो परमानेंट जो नियोनेटल डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें हमें जेनेटिक टेस्टिंग करके देखना पड़ता है कि क्या हम गोली से उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं. और अगर वो वेरिएंट ऐसा आता है कि गोली से ठीक होने वाला नहीं है, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली रहती है. तो इतने छोटे बच्चे में डायबिटीज़ हो सकती है. टांडा में हमारे पास अराउंड 3-4 बच्चे इस तरह से हैं जो लेस देन 6 मंथ्स में डायग्नोस हुए हैं. उनमें से जो तीनों बच्चे हैं अभी वो इंसुलिन पर हैं, तो उनके जो जेनेटिक टेस्टिंग हमने की थी उसमें यही सामने आया कि उन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहेगी आगे के लिए.
1: जी मैम, और कुछ पूछेंगे आप?
2: नहीं मैम.
1: जी
2: थैंक यू
1: कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, धन्यवाद. और सर, जैसा कि बात कर रहे हैं इंसुलिन की, तो अगर कोई बच्चा 10 से 12 साल के बीच का है और अचानक से उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ऐसे में उसे या उसके माता पिता को क्या करना होगा, और साथ ही निकट भविष्य में भी उसकी ये रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी या नॉर्मल हो जाएगी?
0: ओके, इसमें ऐसा है कि ये जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होती है बच्चों में, तो जब बच्चे हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ के आते हैं या डीके में आते हैं हमारे पास
1: जी,
0: तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है
1: जी.
0: तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा इंसुलिन देनी पड़ती है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन जैसे टाइम निकलता है, करीब 1-15 दिन, तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बॉडी में बचे हुए बीटा सेल्स द्वारा से इंसुलिन बनाना शुरू करते हैं. क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, ग्लूकोटॉक्सिसिटी हो रही थी, यानी शरीर में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो गया था कि सेल इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा था उस प्रेशर में. तो जब वो प्रेशर कम होता है सेल के ऊपर से, तो वो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है. और जब वो इंसुलिन बनाना शुरू करता है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है
1: जी.
0: तो इसको हम हनीमून फेज बोलते हैं एक तरह से
1: जी.
0: इसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होती है कुछ पीरियड के लिए, और जब वो बीटा सेल्स फर्दर डिस्ट्रॉय होते हैं तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है
1: जी.
0: तो पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि झाड़ फूँक करके इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, या कोई भस्म खाने से इंसुलिन लेकिन कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि इनिशियल फेज में इंसुलिन शुरुआती दौर में थोड़ी ज़्यादा लगेगी, फिर कुछ फेज में वो बच्चे के सेल जब काम करना शुरू करते हैं तो वो इंसुलिन सेक्रेट करेंगे, तो इंसुलिन कम रिक्वायरमेंट रहेगी और ग्रेजुअली फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी.
1: जी जी. और सर, जैसा कि आपने इंसुलिन की बात हमने कर दी, और एक चीज़ आपने और कही कि जो हमारा चिकित्सा जगत है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई खोज हुई है, तो ऐसे में जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसका इलाज करना जो है वो कितना आसान हो गया है? सर, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो जी, अपना नाम बता दें.
3: मेरा नाम अनुराग है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ.
1: जी अनुराग जी, कार्यक्रम में स्वागत है, और अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से.
3: कोई लोग टैबलेट, कोई डॉक्टर इंसुलिन बताते हैं, कोई शुगर की टैबलेट बताते हैं, तो क्या सही रहता है? और इंसुलिन की टैबलेट, शुगर की टैबलेट या इंसुलिन, और क्या लेना चाहिए, और इनके कुछ नुकसान होते हैं क्या इंसुलिन से?
0: देखिए, आपका बड़ा वाजिब सा क्वेश्चन है. इंसुलिन जो है वो इसकी टैबलेट तो नहीं है अभी तक, तो इंसुलिन तो हमें इंजेक्टेबल या इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ता है.
1: सर ये कह रहे हैं कि शुगर की टैबलेट जो हम लेते हैं ना,
0: हाँ,
1: तो वो लेना बेटर है कि इंसुलिन लेना, ऐसा है इनका प्रश्न.
0: ओके, तो इंसुलिन जो है टाइप 1 डायबिटीज में तो देते हैं, हाँ टाइप 2 डायबिटीज में भी हम इंसुलिन देते हैं
1: जी.
0: तो जहाँ पर HbA1c जो है 8.5% से ज़्यादा आता है अडल्ट्स में, वहाँ पर हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं इनिशियल फेज में. जब वो 8.5% से

0: आ जाए तो वो मेडिकेशन पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो इनिशियल फेज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ का रहता है उसमें भी इंसुलिन का रोल सामने आता है, बट अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जाएँ, मेडिकेशंस टाइम से ली जाएँ, तो 8.5% HbA1c जब कम आ जाता है HbA1c, तो हम इंसुलिन को बंद कर देते हैं। तो लेकिन टाइप 2 का ज़्यादा इलाज। हाँ जी,
1: ब्लड शुगर की जांच कराते हैं वो ज्यादा मायने रखती है, HbA1c ज्यादा मायने रखता है?
0: देखिए ब्लड शुगर की जांच तो डेफिनेटली मायने रखती है, एच
1: जो
0: बी वन सी
1: हमारे घर पे मशीन है उंगली से खींच चुबो के कर लेते हैं, वो ज्यादा रोज के रोज वो सही है या HbA1c जो आप बता रहे हैं वो सही है?
0: देखिए मशीन से तो आपका डे टू डे का पता लगेगा कि शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं, लेकिन जो एच बी ए वन सी है वो ये बताता है हमें कि 3 महीने में आपका शुगर बॉडी में कैसा रहा है। तो अगर वो 6.5% से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो शुगर है वो 200 से ऊपर डेफिनेटली बीच में रहा है। तो इस वजह से एच पी वन
1: थैंक
0: सी इस तरह से हम 3 महीने का पूरा डाटा जो है उसमें एक ही बार में पता लग जाता है कि पेशेंट जो है वो शुगर में मतलब उसका
1: ओके
0: रिकॉर्ड्स
1: ओके
0: कैसे
1: थैंक
0: रहे।
1: यू
0: हाँ
1: जी, आपका भी
0: जी
1: प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। और सर, आप बात कर रहे थे कि नई नई खोज होने से चिकित्सा जगत में, और ये इलाज कितना संभव हो गया और कितना आसान हो गया है?
0: देखिए ये जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आ रही है
1: जी
0: इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले शुगर टेस्ट कराने के लिए आपको लेबॉर्ट्री में जाके सैंपल देना पड़ता था,
1: जी
0: तो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हमारे पास ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, एक छोटे से प्रिक से हम
1: जी
0: शुगर टेस्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब सेकंड था कि इंसुलिन हमें 4 बार जैसे लगानी पड़ती है शरीर में, बच्चों में 3 बार हम खाने के लिए लगाते हैं और चौथी इंसुलिन हम लगाते हैं जो 24 घंटे काम करती है।
1: जी सर
0: तो इसके लिए जैसे इंसुलिन पंप्स अभी आए हैं और टांडा में हमने 16 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंसुलिन पंप्स दिया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के थ्रू।
1: जी सर एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो
2: हेलो मैम,
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: मैं नगरोटा बागवान बल्दर से बोल रही हूँ मैम,
1: जी
2: साक्षी की मम्मा पुष्पा देवी।
1: जी पुष्पा जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे बेटी है वो शुगर का इंसुलिन लेती थी सिरिंज से, अभी
1: जी, और उम्र कितनी है उसकी?
2: तो उसकी 14 चल रही है।
1: जी
2: हाँ जी, तो अब इंसुलिन पंप से ले रही हूँ तो उससे उसका जो इंजेक्शन है वो ज्यादा लग रहा है, तो हिमकेयर भी बंद हो रहा है मैम, तो उससे लिए हमें आपकी क्या मदद मिल सकती है?
1: जी
2: हाँ
1: सर
0: जी देखिए हिम केयर कार्ड अभी कुछ टाइम के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसी के तहत इसकी एक्टिविटी कम की है,
2: हाँ जी
0: तो हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से कि जो बच्चे हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं उनको
2: हाँ जी
0: इंसुलिन का प्रोविज़न फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे पहले चल रहा था वैसे किया जाए।
2: हाँ
0: तो उसके
2: जी
0: लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट से बात की हुई है, तो कुछ दिनों में इसकी क्लेरिफिकेशन आ जाएगी। और
2: हाँ
0: अभी जो
2: जी
0: है हमारे पास जो इंसुलिन का स्टॉक है वो हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो अभी
2: हाँ जी
0: घबराने की ज़रूरत नहीं है।
2: हाँ
0: और
2: जी
0: कुछ दिनों में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो आपको पहले की तरह इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगा।
2: सर ठीक है सर, धन्यवाद।
1: जी सर, और बार बार सर यही प्रश्न आ रहा है कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग का है या गरीब तबके का व्यक्ति है और उसके बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे में वो जो महंगी दवाएं हैं या फिर इंसुलिन जैसे आप कह रहे हैं, या खान पान में जो उनको चेंज करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें वो कैसे कॉपअप करेंगे, कैसे इन चीज़ों से बाहर आएंगे वो?
0: देखिए ये इस बीमारी में जो मेजर खर्चा है वो 2 चीज़ों का है।
1: जी
0: पहला है इंसुलिन का, तो
1: जी जी
0: इसका हमने जो जो मैं ढूंढ पाया पिछले कुछ सालों में, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करके हमें इंसुलिन का प्रोविज़न फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टांडा में करवाया। तो हमारे पास जितने भी 150 बच्चे हमारे पास करीब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, तो उन्हें हम कोशिश ये करते हैं कि अंदर से ही हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से उनको इंसुलिन मिल जाए, या फिर हम 1-2 दिन एडमिट करके उनके जो भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देते हैं। तो ये एक मेजर खर्चा है इंसुलिन का इनका।
1: जी
0: द सेकेंड हिडन खर्चा जो है वो है ग्लूकोमीटर का। ग्लूकोमीटर खरीदना तो

0: है, लेकिन ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप्स जो हैं वो करीब
1: जी
0: 20 से 25 रुपए की एक स्ट्रिप आती है।
1: बिल्कुल।
0: अब कोई बच्चा अगर 4 बार शुगर चेक करता है तो वो करीब 100 से 100 150 रुपए के बीच में उसका ग्लूकोज स्ट्रिप्स का पर डे का खर्चा है, एंड वो ये बढ़ते बढ़ते कोई 4500 रुपये तक चला जाता है
1: जी
0: पर मंथ। तो
1: जी
0: इसके लिए हमने एक सोसाइटी फॉर्म की है, धौलाधार पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्राइन केयर सोसाइटी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ फंड्स हम जनरेट कर पाएँ
1: जी
0: और ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स जो हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो इनकी मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो थोड़ा सा हमें मतलब इन बच्चों के लिए कुछ प्रोविज़न मेंटेन रखें, और स्ट्रिप्स के लिए हम इस तरह से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी सर। हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं।
2: मैडम, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ
1: जी, नेगी
2: गोपालपुर
1: जी,
2: सरकार
1: कार्यक्रम
2: वार्ड
1: में
2: से।
1: आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: और
2: मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपका प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी
0: नागेंद्र
1: जी
0: जी।
1: और नेगी जी, कोई प्रश्न है जो आप पूछना
2: हाँ सर,
1: चाहेंगे?
2: हाँ मैडम जी,
1: जी जी
2: मेरा
1: पूछिए।
2: प्रश्न ये है मैडम जी कि बहुत सारे आधुनिक जो जागरूक परिवार हैं वो बच्चों को बचपन से ही मतलब मीठा देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ना दूध में देते हैं, ना मिठाई देते हैं, ना टॉफी देते हैं। तो इसका कितना रोल है शुगर कम करने में या बीमारी ना हो? और दूसरा, जो हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां या जो यहाँ का जो खान पान है हमारा, किस तरह का रखना चाहिए? जैसे करेला खाने से या नीम का पानी पीने से, नीलकंठी खाने से जो है वो शुगर बोलते हैं कम होती है, तो इसका कितना रोल इसमें रहता है जी?
0: देखिए, जब आप छोटे थे तो आप भी टॉफ़ी खाते थे, है
2: जी जी
0: ना? तो हर चीज़ अगर लिमिट में की जाए तो मुझे लगता है उसका कोई इफेक्ट इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ पे नहीं है। जो बच्चा नॉर्मल है वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में जितना कि रीज़नेबल होता है। और दूसरा रहा हमारा वो पहाड़ी जड़ी बूटियों का, तो टाइप 1 डायबिटीज़ तो आपको मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि ये एक डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है बीटा सेल्स की जो इंसुलिन बनाते हैं। तो इसमें शायद हम कुछ ज़्यादा ना कर सकें, लेकिन हाँ, ये जो जड़ी बूटियाँ आप कह रहे हैं इसका मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा शुगर के ऊपर।
1: जी नेगी
2: जी,
1: जी,
2: थैंक
1: और
2: यू
1: कुछ
2: मैम।
1: पूछेंगे?
2: मैडम, बस यही जानना चाह रहा था मैं कि जैसे हेडिटिक जो फैमिलीज होती हैं उनको बिल्कुल शुगर अगर बंद कर देते हैं तो उसका कोई नेगेटिव तो नहीं उनके फैमिली पे पड़ता है, बच्चों पे?
1: जी सर,
2: और दूसरा, जो ये जो हमारा करेला और खान पान, किस तरह का रखना चाहिए हमें जी?
0: देखिए, जो हेरिडिटरी सिस्टम है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा रोल है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? हाँ, कुछ पेरेंट्स जो हैं या कुछ फैमिलीज़ हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ चल रहा है, उनके बच्चे वो उसमें ससेप्टेबल तो रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा चांसेस तो रहते हैं कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप करें। तो उसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि हम शुगर जो है उनका एक तो मॉनिटर करें, कि साल में एक बार हम जब रूटीन टेस्ट जब कराते हैं तो ये चीज़ भी हम चेक करें। और दूसरा, खान पान का जो है वो हम जो सिंपल खाना हिमाचल में खाते हैं, मुझे लगता है उसका और कोई मुकाबला नहीं है। तो जो सिंपल खाना और ज़्यादातर सब्जियाँ, अब जनरली क्या होता है, मैं जब क्लासेस लेता हूँ अपने पेशेंट्स की, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आज आप क्या खाकर आए, तो वो कहते हैं कि आलू गोभी, आलू भिंडी, है ना, आलू करेला। तो हर सब्जी में आलू कॉमन है
1: आलू
0: और सब्जी जो है वो कम है ना? तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर आपको सब्जी बनानी है तो उसमें से आप अगर आलू माइनस करते हैं तो सबसे बढ़िया वही चीज़ रहेगी। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें शायद हमें थोड़ा सा अपने खान पान में कम करनी पड़ेगी। देसी गेहूं का आटा सबसे बढ़िया है जो हिमाचल में प्रोड्यूस होता है। तो जितनी आप लोकल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं जिस पे स्प्रे नहीं है और आप घर में ग्रो कर सकते हैं, यही चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाता हूँ कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो गमले में ही कुछ लगा लो, ताकि आपके पास हमेशा कोई ऐसी चीज़ रहेगी जिस पे ना तो स्प्रे हुआ है और ना ही वो कमर्शियल है।
1: जी, नेगी जी,
2: धन्यवाद, बहुत
1: कार्यक्रम
2: बहुत
1: में प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी सर, और सर चलते चलते अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो श्रोता हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस बीमारी के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी उन्हें दी है, तो आप एक क्या संदेश उनको देना चाहेंगे?

0: रहते हैं, लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे नज़र आते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो वो भी तो एक हिम्मत के साथ चढ़ते हैं। उसी तरह इन बीमारियों का भी सिस्टम है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे और सिंपल प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आदमी इतना ट्रेन हो जाता है कि इन बीमारियों के साथ वो इजीली लड़ सकता है।
1: जी सर। सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को, और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी इस बीमारी के बारे में, और इस बीमारी के रिगार्डिंग जो भी डर है और जो भी भ्रांतियां हैं वो हमारे मन से दूर की। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम और इस टॉपिक के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। और श्रोताओं, टाइप 1 डायबिटीज़ भले ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी की उड़ान को रोक नहीं सकती। सही जानकारी, अपनों का साथ और सही इलाज मिले तो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे और युवा भी वो सब हासिल कर सकते हैं जिसका सपना वो देखते हैं। और हमें डरना नहीं है बल्कि इस बीमारी से लड़ना है। और आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और वंदना रैना को दीजिए अनुमति। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत के साथ। शिवहरि का संगीत है, चांदनी फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ें हैं।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू।

0: सरकार सबके द्वार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बाजीगर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक का संगीत है, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

हिना फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था, आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर है आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बलदेव सिंह व साथियों की आवाज में गाए माता की भेंट के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचली गीत और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दीपाली बटाल की आवाज में गाया हुआ ये हिमाचली लोकगीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DDU न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय शूलिनी मेला आज संपन्न होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गायकों के नाम रही। इसके अलावा ऐतिहासिक ठोडा प्रतियोगिता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में नरसिम्हा राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव एक कुशल प्रशासक, प्रख्यात विद्वान और भारत की विविध संस्कृति की गहरी समझ रखने वाले नेता थे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है।
0: प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। चंबा जिला के चुराह उपमंडल के नकरोट हिमगिरी सड़क मार्ग पर एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार ये हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत व बचाव कार्य जारी है। स्पीति हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक

0: स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग की परिकल्पना रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: स्पीति हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग की परिकल्पना रखा गया है। पहले 2 दिनों में भावनात्मक कल्याण और समाज सेवा में मठों की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं 3रे दिन युवाओं के बेहतर भविष्य और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। आयोजन का समापन 6 जुलाई को करुणा दिवस और 14वें दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस समारोह के साथ होगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मानसून जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता।
0: इस देशभक्ति गीत को हमने लिया है फिल्म आंखें से, और गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मन की बात रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है। भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
4: कोई बोले राम राम।
5: AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: न्यूज ऑन एयर ऐप

0: अक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो

पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर

साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत

अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा

प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते

कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल

0: पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000,000 अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भरभारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत्, यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 5,000,000 संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटिसंख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14,100 संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2,100 संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि। भारतम् अस्याः प्रति

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों के गाए क्रांति फिल्म के गीत के साथ। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, RD बर्मन का संगीत है, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कर्तव्य फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। SH बिहारी का लिखा हुआ गीत आपको सुनवा रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार। फिल्म है

पेंटर बाबू फिल्म से ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, उत्तम सिंह का संगीत है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। बच्चे इस कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892-22-4391। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे दोस्तों का साप्ताहिक प्रोग्राम बाल सभा लेकर। और बता दें आप सभी को, क्योंकि दीदी से भी नहीं रुका जा रहा है, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से हमें मौका मिला है आपसे रूबरू होने का और आपसे अपने दिल की बातें करने का। साथ ही एक सुनहरा अवसर मिला है आपकी दिल की बातें जानने का। जी हाँ, बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, सजीव फोन इन कार्यक्रम बाल सभा लेकर हम हाजिर हैं आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में। तो टेलीफोन नंबर हम आपको बता रहे हैं, वैसे पुराने श्रोता बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हर बार जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं टेलीफोन नंबर 0189224391 0189224391। ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो का टेलीफोन नंबर, और इस नंबर को डायल करके आप जुड़ सकते हैं अपनी रेडियो दीदी प्रवीण के साथ और बात कर सकते हैं हमसे। जी हाँ, बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद ये मौका मिला है। तो प्रोग्राम के पहले कॉलर बिल्कुल आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, लगता है इन्होंने हमारी कॉल को होल्ड पर रख दिया है। तो जब मुश्किल से कॉल मिलती है ना, तो इस तरह से ये वाली शरारती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब मौका मिलता है तो फटाफट बात करनी है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आप तक बात पहुंच रही है? Hello? आवाज़ आ रही है आप तक?
1: जी
0: नमस्ते, शुभ दोपहर।
1: नमस्ते जी।
0: नाम बताइए अपना।
1: मैं सांची बात कर रही हूँ।
0: सांची,
1: हाँ जी,
0: कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं सांची से बात कर रही हूँ। आज आपकी बातों में भीनी भीनी सी मुस्कुराहट है, क्या हम राज जान सकते हैं?
1: क्योंकि ना कल मेरा बर्थडे, इसलिए मैं आज ही खुश हुई।
0: आपका बर्थडे आज है या कल है?
1: कल है, बट मैं आज से खुश हो रही हूँ।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हजारों साल जिए, खूब तरक्की करें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, और रेडियो दीदी को आप हमेशा याद रखें, और सबसे बड़ा परम धर्म अपने माता पिता को आपने हमेशा याद रखना है और हमेशा उनका मान सम्मान करना है। ठीक है, हाँ। तो साक्षी, कल एक खास दिन है आपके लाइफ का, क्या तैयारियां आप कर रही हैं?
1: ऐसे तो मतलब केक वगैरह काटते नहीं है, बट खाने का मन हो गया तो काट लिया।
0: अरे, ये आपको थोड़ा सा लगता नहीं है कि कुछ गलत है? आप केक नहीं काटते, मन नहीं करता है आपका? वैसे ये हमारी संस्कृति का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह की आजकल की जो जीवन शैली हर कोई अपना रहा है।
1: नहीं, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है तो उसको हम फॉलो नहीं करती।
0: जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। वही तो
1: उसमें भी, हाँ जी, हाँ। उसमें भी केक वालों ने बोला कि आपने वो एक आजकल वो ट्रेंड चला है 19 हो रहे हैं 20, तो उसकी कैंडल लेनी है फिर वो जलानी है। मतलब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बोला।
0: हाँ, बहुत अच्छा, और मुझे भी यही लगता है कि जब ये सब वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है, तो हम इसे क्यों फॉलो करें, क्यों अपनाएं, है ना? क्योंकि हमारी संस्कृति में तो पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया गया है, जन्मदिन वाले दिन, है ना? मंदिर में जाया जाता है, और जिसका जन्मदिन हो उसके हाथों दान करवाया जाता है, बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो लगता है कि हाँ, उस मायने में हम अपने जन्मदिन को अच्छी तरीके से मना रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: तो कुछ
1: क्योंकि आप बर्थडे वाले

0: दिन ही वो कैंडल बुझा दोगे तो फिर सारी सारी साल तुम बुझाते ही रहो, मतलब तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज तो उस दिन ही चली गई जिस दिन तुमने कैंडल बुझा दी।
1: बहुत अच्छा लग रहा है सांची कि आपके विचार इतने अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों को हमारे तमाम श्रोता ज़रूर सुनेंगे और सुन रहे होंगे, और अपने जीवन में अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि हाँ भाई सुनो, आपकी दोस्त सांची कितने अच्छे विचार दे रही है जन्मदिन को लेकर कि हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए।
0: हाँ जी, बस
1: कुछ और कहना चाहते हैं आप सांची?
0: मैं इतना ही ना कि मतलब खाना हो मेरी तरह तो ले आओ और काट दो उसको और खा लो, बट
1: हाँ,
0: ऐसा ना करो। हाँ
1: वाह
0: जी
1: क्या बात है, खुश कर दिया आपने, और दीदी का
0: हाँ
1: पत्ता
0: जी
1: साफ कर दिया कि दीदी अगर केक मांगेगी तो हम पहले से ये वाला जवाब दे देंगे।
0: अरे नहीं ऐसा नहीं है।
1: मजाक कर रहे हैं बहुत
0: जी
1: सांची, सच में दिल से हम प्रभावित होते हैं आपके विचारों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर, कि जब छोटी सी अवस्था में, एक छोटी उम्र में बच्चा इस तरह से जब अपनी सोच का दायरा बढ़ाता है, एक पॉजिटिव सोच रखता है, तो कितना अच्छा लगता है ना? तो सांची एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, और बहुत सारी तरक्की आप करें अपने जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे काम आप करें, और अपने धर्म अपनी संस्कृति से आप हमेशा जुड़ी रहें। शुक्रिया सांची कॉल करने के लिए। हमारे बाकी श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 01892224391, ये है आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो।
0: नूरपुर से।
1: बिल्कुल साक्षी, आपको तो परिचय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि कुछ एक हमारे श्रोता ऐसे होते हैं ना, अगर आप नाम नहीं भी बताएंगे, आपकी कॉल नहीं भी आएगी, फिर भी ध्यान लगा रहता है कि हमारे नियमित श्रोता ने हमें कॉल नहीं किया। साक्षी कैसे हैं आप?
0: ठीक हो दीदी जी? आप बताओ ठीक हो?
1: आपकी दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत
0: आपने
1: बढ़िया
0: बोला
1: है।
0: कि नाम बताने की कोई लोड़ नहीं है, पर बताना पड़ता है, जो नए जुड़ते हैं उनको तो पता नहीं ना नेम
1: हाँ
0: कौन
1: वही
0: कौन।
1: ना, नए जो दोस्त आपके सुनेंगे उनको तो पता ही नहीं लगेगा कि किसने बात की, है ना? ये तो सिर्फ,
0: आप
1: हाँ
0: ठीक हो? मेरे को आपसे बात करने का बहुत दिल कर रहा था, पहले भी किया फोन तो पहले नहीं लगाना।
1: अच्छा, आपने पहले कब कॉल किया था साक्षी?
0: पहले किया था मैंने ना, उठाया अपने, फिर पता नहीं
1: अच्छा हाँ
0: कब
1: हाँ
0: हो गया था।
1: आपकी कॉल होल्ड पर चली गई थी।
0: हाँ जी
1: हाँ कोई बात नहीं, आपने फिर से कोशिश की और अब आपकी बात हमसे हो रही है।
0: हाँ जी मैम, दीदी जी
1: हाँ, आपकी बड़ी दीदी है, हमेशा आपने बेझिझक हमसे बात करनी है, दिल में कोई भी बात हो।
0: आपकी आवाज बहुत अच्छी है दीदी।
1: साक्षी आप तारीफ कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात है साक्षी, हम हर एक बच्चे से यही बोलते हैं कि जैसी हम सोच रखते हैं ना, जैसा हम इस दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हैं, हमें ये दुनिया वैसी ही नज़र आती है। आप अच्छे तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, कहते हैं ना, आप भले तो जग भला, है ना? जब हम दूसरों को लेकर अपने दिल में नेगेटिविटी रखते हैं तो हमें सामने वाला बुरा ही नजर आता है, जब हम प्रेम रखते हैं अपने हृदय में तो सामने वाला अच्छा और सुंदर दिखता है।
0: मेरे को तो कोई बुरा नहीं लगता, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ,
1: हाँ
0: सभी को मैं अच्छे बोलती हूँ।
1: हाँ बिल्कुल साक्षी, यही धारणा आपने
0: जी
1: हमेशा अपने हृदय में रखनी है, क्योंकि हमें भगवान ने इसलिए ही इस धरा पर भेजा है कि हम प्रकृति के हर एक जीव से प्रेम करें,
0: दीदी
1: ईर्ष्या।
0: जी, मैं आप
1: हाँ
0: दीदी जी मैं आपका भजन सुनाऊं? सुनाती
1: बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आप भजन सुना सकते हैं, सुनाइए।
0: हूँ। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दीदी क्या अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा क्या?

0: घास
1: दूध
0: खाई गईया।
1: पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल।
0: बहुत बहुत आनंद आया साक्षी। और आप जब गाते हैं ना तो हमारा भी मन करता है कि भाई जब साक्षी गा सकती है तो एक छोटी सी कोशिश हम भी कर सकते हैं।
1: हाँ जी, मैम जी आपकी बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाया आपने दीदी जी।
0: सच्ची आपको अच्छा लगा?
1: हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: अरे
1: मेरे को आप आपकी आवाज सबसे अच्छी लगती है।
0: शुक्रिया। पता है क्या हुआ साक्षी, जब आप गा रहे थे तो मुझे लगा अरे साक्षी इतना अच्छा गा रही है तो मैं क्यों नहीं गा सकती। छोटी सी कोशिश आपकी दीदी ने भी कर दी और साक्षी को।
1: मैंने
0: हाँ
1: तो आपको पूरा गाना सुनाया, अपनी मेरे को लेने जाते जात नहीं ना, मुझको जितनी जात थी मैंने सुना दी आपको।
0: कोई बात नहीं साक्षी, आपने जितनी लाइनें गाई बहुत अच्छी थी और आपकी इन्हीं लाइनों में इन्हीं पंक्तियों में बहुत बड़े बड़े अर्थ छिपे थे। अगर कोई सच में समझना चाहता है तो समझ सकता है। और साक्षी कुछ और कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं कुछ नहीं, मैं जे कहना चाहती हूँ, खुश रहो, किसी साथ कोई झगड़ा ना करो, ऐसे जैसे बात कोई भी बात करे आप उनसे ना अच्छे से बात करो, हंस कर बात करो, किसी को
0: बहुत
1: बुरा ना कर बोलो।
0: बहुत अच्छा संदेश आपका साक्षी।
1: दीदी जी मैं आपको बताऊं,
0: हाँ जी
1: मेरी फ्रेंड भी है एक,
0: बताइए।
1: उसका नाम जानवी है। जानवी
0: तो आप जानवी के लिए कुछ कहना चाहते हैं साक्षी?
1: के लिए जय कहना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है,
0: बहुत
1: मैं उससे रोज ही बात करती हूँ, रोज बात करती हूँ, मेरे को इतना मजा आता है बात के। अगर मैं उससे बात नहीं करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कोई काम नहीं किया है, जैसे
0: हाँ
1: आपसे बात करके लगता है मेरे को।
0: ऐसा लगता है ना कि जब किसी अपने खास से बात नहीं होती है तो ऐसे लगता है आज
1: भूखा
0: हमारा पेट भूखा है कुछ
1: है, मैंने
0: हाँ
1: किससे बात नहीं की, कोई काम मेरा रह गया। मैम
0: ऐसा लगता है कि कोई जरूरी काम हमसे छूट गया है।
1: दीदी आपके भी फ्रेंड है कोई? आपकी
0: बहुत सारे
1: तो बहुत सारे होंगे पर मेरी
0: हाँ
1: वो भी फ्रेंड है।
0: आपको
1: हाँ
0: आपको मैं अपने फ्रेंड्स के नाम बताऊं?
1: जी बताओ।
0: साक्षी, सांची, अर्शिया, वंश और शाइना, बहुत सारे दीदी के फ्रेंड हैं। अगर आपको मिलना है ना तो आप आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में आ सकते हैं रविवार के दिन।
1: मेरे को पता किससे मिलना, मेरे को तो आपसे मिलना है।
0: हाँ बिल्कुल दीदी आपको मिलेगी क्योंकि दीदी के इससे बढ़कर अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है
1: धन्यवाद जो आप
0: शुक्रिया।
1: मेरा फोन उठाते हो।
0: अरे आप कॉल करते हैं, आप वक्त निकालते हैं बात करने के लिए, इसलिए हम आपसे बात
1: दीदी
0: करते हैं। शुक्रिया।
1: वक्त क्या है, वक्त तो मेरे पास खुला होता है, मैं तो कोई काम नहीं होता तो मैंने बोला बात ही कर लेती दीदी से।
0: ठीक है साक्षी, बहुत अच्छी बात। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग और हिस्सा बने रहिए कार्यक्रम बाल सभा
1: हाँ
0: का।
1: जी, थैंक यू दीदी जी।
0: बहुत बहुत अच्छा लगता है इस तरह के बच्चों से बात करना। बहुत आनंद आता है जब हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समझदारी वाली बातें करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। एक और श्रोता लाइन पर है, इन्हें लेते हैं, बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी
1: मेरा
0: नमस्ते।
1: नाम अक्षिव है।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम अक्षिव है, अक्षिव।
0: अक्षित, अक्षिव,
1: हाँ जी,
0: बहुत प्यारा और यूनिक सा नाम है आपका। अक्षिव कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
1: दूसरी।
0: दूसरी कक्षा में आप पढ़ते हैं और आपके घर कहाँ पर है?
1: अंसौली।
0: अंसोली से आप बात कर रहे हैं, काफी नजदीक है आपके घर। अच्छा बताइए आज बारिश है या धूप है?
1: धूप।

0: और आप कहीं बाहर धूप में तो नहीं घूम रहे हैं?
1: नहीं।
0: हाँ, ये भी अच्छी बात है। अक्षिव, आपको कॉल किसने लगा कर दी, नंबर किसने लगाया?
1: दादा ने।
0: वाह, क्या बात है, हमारे दादाजी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और जब बात हो जाए ना हमसे अक्षिव, तो आपने दादाजी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने नंबर लगाया और बात करवाई।
1: अच्छा,
0: कुछ और कहना चाहते हैं अक्षिव? कुछ सुनाना चाहते हैं आप अक्षिव?
1: हाँ जी।
0: कुछ और सुनाना चाहते हैं बच्चे आप?
1: नहीं, बस इतना ही।
0: अरे, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात से ना दीदी का पेट नहीं भरता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं दीदी के साथ। आपके घर में और कौन कौन है?
1: दादा दादी, भाई बहन,
0: और आप सबसे छोटे? एक भाई और दो बहनें। अच्छा, मतलब आप अकेले भाई हैं, है ना? ताऊ ताई भी हैं? अरे वाह, क्या मज़ा है फिर तो आपका। मम्मी पापा भी हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप अपनी बहनों की पिटाई करते हैं या फिर वो आपकी पिटाई करते हैं?
1: वो मेरी पिटाई करते हैं।
0: अरे, गंदी बात। अरे अच्छा, आपकी बहन आपके आसपास है अभी? तो बात करवाइए।
1: हाँ जी। हेलो,
0: हेलो। हाँ जी, नाम बताइए अपना। हेलो,
1: हेलो। हाँ
0: शानवी।
1: जी, गुड
0: गुड आफ्टरनून,
1: आफ्टरनून।
0: शुभ दोपहर,
1: ठीक
0: कैसे हैं आप?
1: हूँ।
0: अच्छा, आप अक्षिव से बड़े हैं,
1: हाँ
0: तो आप फिर अक्षिव की पिटाई क्यों करते हैं? शरारती बच्चा है ना ये।
1: मैं इसकी ताई की लड़की हूँ, इसकी सगी बहन त्रिशा है। हाँ
0: फिर आप बहन तो आप भी हुई ना?
1: जी, पर मैं इसको मारती नहीं हूँ। मैं
0: ओ, आप तो बुरे फंस गए फिर तो, अक्षिव ने आपका नाम ले दिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शरारतों में दीदी भी कहीं खो जाए। और अक्षिव अगर मेरे हाथ लगे ना, तो मैं इसको ढेर सारा प्यार दूं और जोर की झप्पी डालूं कि अक्षिव ऐसे दीदी का नाम नहीं लिया करते हैं। ठीक है अक्षिव, अक्षिव अब दीदी कॉल रख के ना सच में आपकी पिटाई करेगी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? नाइन्थ में। अरे, आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, अक्षिव ने आपको ऐसे ही फंसा दिया। गंदा अक्षिव, दीदी के साथ आप इस तरह की नटखट शरारत करते हो,
1: ये बहुत शरारती है।
0: बहुत शरारती है ना? लेकिन इसको थोड़ा प्यार से आपने समझाना भी है कि ऐसी शरारती नहीं करनी है जिससे कोई नुकसान हो।
1: नहीं, ऐसी शरारते तो नहीं करता।
0: हाँ, मतलब सिर्फ आपको तंग करता है। हाँ, तो
1: करता
0: इतना इतना तो चलेगा, बड़ी बहन हो, थोड़े से इसके नाज उठाओ, नखरे उठाओ इसके। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू। बाकी के श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ अच्छी, कुछ पुरानी, कुछ नटखटी, कुछ नमकीन, कुछ मिर्ची से भरी हुई बातें, क्योंकि बहुत समय के बाद जब हमें अवसर मिलता है आपसे जुड़ने का, तो मन करता है, जी हाँ, बहुत बहुत बहुत सारी बातें करें। हेलो
2: दीदी जी, राधे राधे।
0: वंश,
2: हाँ जी, ठीक
0: कैसे हो?
2: हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कब से आप क्या कर रहे थे, इतनी लेट आप कॉल करते हो? कभी कभी पता है दीदी का मन क्या करता है कि आपको ना सुबह ही ले आऊं, जिस दिन लाइव फोन इन प्रोग्राम होना होता है।
2: आप 2 महीने के नहीं आए।
0: ओ माय गॉड, आपने याद रखा दीदी 2 महीने से गायब थी?

0: फिर आपने मुझे मिस किया?
1: हाँ जी
0: आप मेरी याद में रोए?
1: हाँ जी
0: तो वंश, मैं आपको बता दूं कि हम एक महीने से आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, यानी जो चुनाव होने थे पंचायती स्तर के और जिला स्तर के, उस कारण हम कोई भी फोन इन प्रोग्राम नहीं कर रहे थे।
1: ठीक है,
0: हाँ। तो वंश, ये बताइए कि अब तक क्या काम आप कर चुके? दिन का एक बजने को है। बताइए वंश।
1: गुदाई की
0: खेतों में जाकर?
1: हाँ जी।
0: अरे, हमारा वंश इतना बड़ा तो नहीं हुआ है कि मम्मा इसको खेतों में ले गए?
1: कर लेता हूँ।
0: आप काम कर लेते हैं? अरे वाह, क्या बात है। और ये दीदी की तरफ से शाबाशी वाली तालियां हमारे वंश के लिए, वंश की मम्मा के लिए और वंश के दादाजी के लिए, क्योंकि जब हम छोटे स्तर से बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हमारे बच्चे कुछ अच्छा और बेहतर सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और वंश, एक बात हमेशा आप याद रखना कि कभी भी ये मत कहना कि मैं अभी छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? जब भी मम्मा आपको कोई काम दें, दादाजी कोई काम दें, घर का कोई भी बड़ा सदस्य जब आपको किसी काम के लिए कहता है ना, तो आपने ज़रूर कहना है कि हाँ, मैं आपके साथ कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जब वंश आप खेतों में काम करते हैं, मज़ा आता है आपको?
1: हाँ जी।
0: और जब कोई काम गलत हो जाता है तो सबसे पहले कौन डांटता है? पापा डांटते हैं। अरे, काम आपको मम्मा सिखाती हैं, दादाजी सिखाते हैं, फिर पापा क्यों डांटते हैं? हाँ, अरे वाह, खेतों का काम पापा जी सिखाते हैं। पापा जी, अगर आप दीदी जी को सुन रहे हैं ना, तो खूब डांटो फिर वंश को, ठीक है? वंश, इसी तरह से आपने घर के छोटे मोटे काम ज़रूर सीखने हैं, क्योंकि बच्चे माता पिता के हाथ होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं। जैसे मम्मा पापा आपके लिए ढेर सारा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, तो एक छोटी सी कोशिश आपने भी करनी है ताकि वो मन से खुश रहें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है?
1: हाँ जी।
0: अरे, आज वंश इतना कम कम बोल रहे हैं, दीदी ज़्यादा ज़्यादा बोल रही है, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है?
1: दीदी जी, मैं थॉट सुनाना है।
0: क्या सुनाना है आपको वंश?
1: थॉट।
0: अच्छा, थॉट सुनाना है, विचार आपको सुनाना है, ठीक है, सुनाइए।
1: इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, देन फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो।
0: बहुत बहुत ही प्यारा सुविचार आपका, बहुत अच्छा लगा वंश, बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह आपको तपना होगा, जलना होगा, ठीक है? तो ये विचार आप स्कूल में भी बोलते हैं?
1: हाँ जी।
0: हाँ, बहुत। और ये स्कूलों की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है कि प्रार्थना सभा से पहले सुविचार के लिए बच्चों को जब आमंत्रित किया जाता है तो एक कंपटीशन की भावना बच्चे में होती है कि आज मैंने ये वाला विचार बोलना है। तो वंश, आपने जो अभी ये विचार बोला, थॉट बोला, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है वंश? हाँ, कि हमें भी मेहनत करनी है हर एक परिस्थिति में, ठीक है?
1: हाँ जी।
0: शुक्रिया वंश कॉल करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मम्मी का, आपके दादाजी का, आपके पापा जी का, जो आपको इतना एनकरेज करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं बात करने के लिए, और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से बात करनी है, क्या बोलना। और बहुत अच्छा लगता है कि वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके पीछे खड़े रहते हैं। दिल से आप

0: का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया वंश कॉल करने के लिए। और दीदी को भूलना नहीं है, फिर से अगली बार यानी अगले महीने के अंतिम रविवार को आपको जुड़ना है हमारे साथ, ठीक है?
1: हाँ जी,
0: ठीक है। वंश बोलना है आपको बच्चे कुछ?
1: बोल, टांग में लगी थी।
0: आपको टांग में लग गई थी, कैसे?
1: साइकिल में आ गया था मेरा।
0: साइकिल कैसे चला रहे थे? अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से साइकिल चलानी है ताकि आपको कोई भी चोट ना लगे। और मुझे लगता है कि वंश की कॉल कट हो चुकी है, तो वंश आपने अच्छे से अपना ध्यान रखना है। जब भी कोई काम आप करते हैं तो ध्यान आपने उसी काम पे लगाना है। शुक्रिया अदा करते हैं हम वंश का और वंश के सभी परिवार के सदस्यों का। एक बार फिर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए अपना। अनिका। हेलो अनिका, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ थे? आपको पता, अब तो दीदी जाने वाली है, बड़ी जोर से भूख लगी है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं अनिका?
1: सेकेंड क्लास में।
0: अरे, दीदी की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार। हमेशा खुश रहना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और एक डांट भी सुन लो, अगली बार आपने कॉल करनी है ना तो ठीक समय पर करनी है, ताकि दीदी आपसे प्यारी प्यारी सी बड़ी बड़ी सी बातें कर सके, बहुत सारा प्यार आपको कर सके, ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके
1: ओके, बाय
0: बाय। जी हाँ, आखिरी के दो मिनट हमारे पास बचे हुए हैं और अब हम अपने सभी श्रोताओं को बता देते हैं, आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और कार्यक्रम को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में हमें अपना तकनीकी सहयोग दिया सुरेंद्र कपूर ने। अब आप सभी से आपकी रेडियो दीदी प्रवीण लेती है इजाज़त। और हाँ, आप सभी बच्चों ने हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अपनी हंसी से, अपनी मुस्कुराहट से अपने घर आंगन में ढेर सारी खुशियों को बिखेरते रहना है। और हाँ नन्नी दोस्तों, एक और बात कि समय का सदुपयोग करना है और हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सदुपयोग करना है। अब इसी के साथ प्रवीण यानी रेडियो दीदी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने

0: डीआरडीओ ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous, from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 250

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माया नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहाँ नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए, जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छल छला आई हों या गला रुंध गया हो या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छल छलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज़ क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं लेकिन आपके भीतर की आवाज़ क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना, कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म का नाम था कागज की फूल। एक श्रोता लिखते हैं कि पर्दे पर फिल्म की नायिका वहीदा रहमान वक्त ने किया क्या हजी सितम गाने में हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन और दर्द भरे गानों में से एक है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत समय की क्रूरता, अधूरे प्रेम और पहचान के खो जाने की एक अमर दास्तान है। एक प्रसिद्ध निर्देशक और उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान के बीच के अधूरे प्रेम और अलगाव पर आधारित है ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बज रहे गीत की पार्श्वभूमि में अगर नायक या नायिका लफ्ज हिलाए बगैर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे गीत ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है, आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे हैं उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो ज़रूर लौट कर आऊँगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है। मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में ज़रूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज़। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्व गीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज़ होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुँचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पार्श्व में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो

पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है। हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं हर बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफ़र में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती हैं कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है, मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है, लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं, जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया हैं, जब हमसे कोई पूछता है, जबकि ज़रूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि एक बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो एक घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे क्या?

करें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थीं। फिल्म हाथी मेरे साथी में जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफ़ी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है, जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को। साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि इस अंदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्मों में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर्मन में द्वंद तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है, अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मनदा के गाए ज्यादातर गीत अंतर्मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे ऐसे गीत हैं SD बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज़ है, और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज़ यानी बर्मन दादा की आवाज़, फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए। पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

सचिन देव बर्मन की आवाज थी, फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिन दा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो, जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बचते हैं।

बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं आपकी लिस्ट में, वो लगभग गीत शामिल हैं। और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं, इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद्व को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना, और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थी मैं आज की। आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं, जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए, जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफ़ी साहब की आवाज़ भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए, बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं इस सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से ज़रूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नगेंद्रनाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नज़र आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं, या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं, या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेता हूं। बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत ज़रूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज़ मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफ़र में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सान्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो, वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना वो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है, बिल्कुल उनकी आवाज़ तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज़ है, ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे ज़िंदगी में भावुकता भी ज़रूरी है, हाँ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला कर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है, तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है। गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नज़र रखी आज हमारी जो हमने जो टैक्स दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियाँ, तो तब भी सांसें भारी लगे थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है, जिस आपकी आवाज़ में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, ज़िंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूँगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी, तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए, बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आपको यात्रा करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यात्राएं जीवन के अनुभवों के विस्तार के साथ मानव के यानी हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं जीवन को भी एक यात्रा कहा गया है। प्राचीन समय से ही कवि और मनीषी यात्राओं

अब जब आप यात्रा पे निकलने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो कुछ बातों का ख्याल भी रखिए। यानी यात्रा को सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए हमेशा सफर का आसान फार्मूला अपनाएं, यानी कम सामान सफर आसान। यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ के मौसम और घूमने की जगहों की जानकारी जरूर बना लें। ये यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अलग अलग जगहों को, वहाँ के लोगों को और उनकी संस्कृति को करीब से देखने पर हमारी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ता है। यात्रा के दौरान हम अनजाने में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। स्थानीय लोगों को जानना, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना, नई नई भाषाएं सीखना, नई संस्कृतियों से पहचान होना, छोटी मोटी चुनौतियों का खुद सामना करना, इन यात्राओं से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये यात्राएं हमें ऐसे अनुभव और यादें दे जाती हैं जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं।

दोस्तों, यात्रा सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपने साथ जरूरी कागजात, जरूरी दवाइयाँ, मौसम के अनुसार कपड़े और एक पावर बैंक जरूर रखें। घूमने जाने से पहले यात्रा का मार्ग, रुकने की जगह और बजट का खाका तैयार कर लेना चाहिए। पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी जुकाम की दवाइयाँ हमें साथ रख लेनी चाहिए। मूंछ या दर्द के लिए स्प्रे भी रख लेना चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और टिकट का एक अलग ट्रैवल वॉलेट बना लेना चाहिए। सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं आता है, इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने पास पर्याप्त कैश जरूर रखना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हों, जैसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, कहीं भी जा रहे हों, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करें। सफर के दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही

0: बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी

0: इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई, 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योग

0: अनुदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन की संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।
4: तुम अगर मुझको

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया।
2: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से पहले प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके

0: निपटने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में स्थानीय लोगों व विद्युत विभाग के साथ चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने इलाके में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। सोलन में राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज अंतिम दिन है। मेले के तीसरे दिन आज महिलाओं की रस्सा कस्सी प्रतियोगिता आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसके अलावा कबड्डी प्रतियोगिता ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय महिला ITI खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की 400 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। समापन अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्द जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत के भविष्य को रफ्तार देती तकनीक। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: पिछले एक दशक में भारत की पहचान सिर्फ एक बड़े डिजिटल बाजार की नहीं रही, बल्कि वो दुनिया के सामने एक उदीयमान वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, स्वदेशी नवाचारों और दमदार स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय कर रहा है। सरकार के निरंतर निवेश ने देश की तकनीकी क्षमता को न केवल विस्तार दिया है, बल्कि दुनिया में भारत की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में चलाए जा रहे मिशन मोड अभियानों ने देश में इनोवेशन की एक नई लहर पैदा कर दी है। आज हमारा भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी डिजिटल गवर्नेंस और बढ़ती ग्लोबल पार्टनरशिप भारत को दुनिया के सामने एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये तमाम उपलब्धियां विकसित भारत 2047 के सपने की मजबूत नींव रख रही है और वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका को और बुलंद कर रही है। 12 वर्ष पहले देश ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तकनीक को अपना मुख्य आधार बनाने की एक दृढ़ यात्रा शुरू की थी। दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन और रणनीतिक निवेश के बल पर ही आज भारत स्वदेशी तकनीकों, सुरक्षित डिजिटल सिस्टम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने में सक्षम हो सका है। भारत के इस बदलाव को राष्ट्रीय क्षमता विकास में किए गए बड़े निवेशों से जबरदस्त ताकत मिली है। इन सभी प्रयासों ने मिलकर देश के उभरते हुए क्षेत्रों में एक भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को विकसित करने के अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। देश की इस बढ़ती क्षमता और व्यापक विस्तार ने वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को और भी मजबूत किया है। आज भारत ने एक भरोसेमंद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारियां

0: खड़ी कर ली हैं। भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित करके दिखाया है कि कैसे समावेशन, सुलभता और किफायत को सुनिश्चित करते हुए इतनी बड़ी आबादी के स्तर पर तकनीक का सफल उपयोग किया जा सकता है। आज भारत न केवल वैश्विक तकनीकों को अपना रहा है, बल्कि एक भरोसेमंद, समावेशी और मानव केंद्रित तकनीकी विकास को लेकर वैश्विक विमर्श और बहस को नया आकार भी दे रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहन घोषित किए गए। इसमें 2047 तक टैक्स हॉलिडे, डेटा सेंटर सेवाओं के लिए 15% का सेफ हार्बर मार्जिन और आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मानदंडों के तहत पात्रता सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ करना शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड अप्रूवल सिस्टम को भी शुरुआत की गई। स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH भारत के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल आधार स्तंभ के रूप में उभरा है। मार्च 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करवाया है, जहां 23 भाषाओं में 1000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। SIDH एक एकल विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप और उद्यमिता के अवसरों को एकीकृत करता है, जो देश भर में करियर के रास्तों और आजीवन सीखने के अवसर पर तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वर्ष 2015 के 81वें स्थान से वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर जगह बनाई है। ये उपलब्धि एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में भारत के तीव्र विकास को प्रतिबिंबित करती है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। सरकार के मजबूत समर्थन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क और इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच सहयोग ने भारत की नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामूहिक चर्चा भी आपने सुनी। विषय था भारत के भविष्य को रफ्तार देती तकनीक। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे आकाशवाणी मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज़। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था, मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी, कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डायन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको थक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई, इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।

0: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
1: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
0: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ। आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
1: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
0: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
1: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
2: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
1: हेलो।
0: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
2: सुनाओ।
0: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
0: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
1: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानती हो उसे उमा?
0: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
2: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
2: तब
0: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गाँव के मंदिर में शादी करा देंगे।
1: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ।
2: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
2: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
1: अरे, ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
2: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
2: इस वक्त कुमार सामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
2: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
1: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
2: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
2: मदद? तुम
0: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
2: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
1: हों। नहीं, ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
2: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गांव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेतीबाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
2: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
2: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
2: अरे भाई, सब्र करो सब्र करो, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
1: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
2: अच्छा।

0: तो पहले ही मालूम था।
1: क्या मालूम था तुम्हें?
0: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
1: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
0: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
1: ये भी कम हटीली नहीं है।
0: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
1: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
0: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं, डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
1: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
0: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
1: फिर
0: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
2: कंपाउंडर
0: जी, अभी आया।
2: सुनो अलाबख्श, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
0: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
2: तुमने सुना है लबख्श, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
0: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
2: अच्छा लबख्श, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ। जी बहुत अच्छा।
3: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
4: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
3: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
4: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
3: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
4: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
3: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
4: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गाँव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
3: अजी बड़ी आई धर्म सेवा करने वाली, हम भी देखें जी कब तक चलेगा।
4: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
3: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
4: शाबाश, ये हुई काम की बात, देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
5: डॉक्टर साहब,
2: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
5: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
2: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
6: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
5: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
6: ओ, दवाएं क्या हुई?
5: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
6: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
2: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
6: अच्छा,
2: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
6: ठीक है,
5: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
2: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
1: डॉक्टर साहब, एक बात है।
2: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
1: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा।
2: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
1: वो उमा जी के घर
6: में, मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
1: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे

0: विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
1: डॉक्टर साहब,
0: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
2: डॉक्टर साहब
0: कौन है?
2: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
0: आप कौन हैं? अरे बहनम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब,
3: ये रईस कुमार स्वामी की घरवाली है।
0: क्या,
3: कुमार स्वामी के घर?
2: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
0: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
2: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
3: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
0: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
3: आपकी बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूं ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
0: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
4: डॉक्टर साहब।
0: हाँ हाँ, बताइए बच्चा कहाँ है?
2: उस कमरे।
0: चलिए आइए, उसी कमरे में ही चलते हैं।
4: आइए डॉक्टर साहब, इधर से।
0: चलिए।
2: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
0: तुम पाउंडर?
4: जी, ये लीजिए दवा का बच्चा।
0: लो।
4: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
0: कोई भी दवा बेकार है।
4: डॉक्टर साहब,
5: डॉक्टर साहब,
4: नहीं नहीं नहीं।
0: कंपाउंडर
5: जी,
0: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
5: जी,
0: चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
2: नहीं,
0: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम
4: जाओ। डॉक्टर साहब,
0: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस दिया।
4: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फिकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
6: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
0: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
5: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
5: चलो
0: चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा

0: आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
1: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। हाँ, आपने मेरी जान बचाई।
0: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा?
1: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरा पोता हुआ है।
0: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
1: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
0: अच्छा,
1: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
0: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
1: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई हाँ सुनी उमा।
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए चलिए।
0: भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है।
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: सुनिए एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किबाड़ तोड़ डाली और भीतर
1: गजब हो गया।
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?

0: भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।
2: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
3: पुलिस ने एन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
2: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
3: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
2: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
3: आइए आइए आइए।
4: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
3: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए, आइए आइए आइए।
4: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
5: क्या किया?

0: चला जाए। अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
1: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
0: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
0: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
1: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
0: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
1: जरूर जरूर।
0: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
1: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
0: गुड बाय।

0: क्या सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: उमा,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग। नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अम्बेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफ़ी लिए जाते हैं और ये एक विचार

0: उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज़्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा सब कुछ, वो जिस तरह से आया था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एन्जॉय किया बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता
1: अपने
0: पाएगा।
1: आप में एक एनसाइक्लोपीडिया,
0: हाँ वो
1: आप
0: तो
1: किसी
0: करेक्ट
1: भी विषय का जिक्र करें तो वो पेज खुल जाएगा,
0: करेक्ट
1: वैसे जैसे आज
0: हाँ
1: हम क्लिक करते हैं ना
0: हाँ हाँ
1: वैसा
0: हाँ वैसे वैसे
1: मामला
0: तो ही हिमसेल्फ वॉज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते
1: था। यस
0: हैं। क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना ज़रूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज़ अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
0: व्यापक
1: मिला।
0: दृष्टिकोण है ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे,
1: बिल्कुल
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस
1: बिल्कुल।
0: समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब

0: गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है,
1: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है
0: बहुत,
1: जिसका जिक्र है।
0: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
1: बिल्कुल
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे
1: बिल्कुल
0: कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक हैं जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी वो।
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को
0: हाँ
1: दौड़ जाती है,
0: हाँ
1: मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है। जबकि कितने कम दृश्य हैं और वो
0: साढ़े तीन
1: पूरे
0: सीन्स
1: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे
0: बहुत
1: और
0: ज्यादा।
1: उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था,
1: हाँ बिल्कुल, यहां
0: राइट
1: से ही आगे
0: हाँ,
1: चलेंगे।
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। बिकॉज मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार, इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बम्बई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊँ, वहाँ पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3 साढ़े 3 सीन है। 3 साढ़े 3 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो, ऐसा ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी, तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये,
1: जी
0: हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है उस वक्त। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह,
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते,
0: ट्रेन से, हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे इस तरह से नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था, हाँ। वहां पर तारा

0: पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं। हाँ, और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है। और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह, उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कुछ किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था। हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली, इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आ रहे हैं,
0: इतने फोन आने लगे। मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं।

0: था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की।
1: जब वो
0: सड़क
1: बहुत बड़े स्टार
0: बहुत
1: बन चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट। सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए वो, तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते
1: है,
0: थे।
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: 2003-04 की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूँ मैं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया था?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह।
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ
1: था।
0: हाँ अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो 3 दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली। लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा, तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गाँव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब

0: पापा ने काम बहुत कम कर दिया था बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना. उस समय सैटेलाइट टेलीविज़न आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा,
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहाँ बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नज़र हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज़्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहाँ भर भी वो जाते थे. राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहाँ पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहाँ पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहाँ जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं.
1: क्या
0: उसमें
1: बात
0: फैमिली
1: है,
0: फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स. तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है. है ना? तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था. और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे. तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीज़ें थी जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे. और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफ़ी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: वाह
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना. बस ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे. तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं गए साथ में.
1: वाह वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल, डे वन से. जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे. जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे. और वहाँ पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहाँ पर रूम्स बनाए हुए थे. तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा. तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा. इसलिए सबको खिलाते थे. और
1: हाँ
0: मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था.
1: वाह।

0: वाह वाह।
1: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
0: हमेशा कोई ना कोई,
1: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
0: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से। ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो नाटक जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते
1: हैं। हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
1: हाँ ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमें

0: पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की. इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है. मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड. और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहाँ पर एक म्यूज़ियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहाँ पर वो म्यूज़ियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे. इसलिए वो म्यूज़ियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया.
1: गजब.
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
1: क्या बात है.
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूँ, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम. और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
1: क्या बात है.
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं. और हमेशा मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसा मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो, ठीक है क्या आपको मदद की ज़रूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फ़ोन लगा लिया, दिल्ली में फ़ोन लगा लिया. कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया. और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए. इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात.
1: वाह वाह.
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी. और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी. जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे. तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में, जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी. और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए. इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है. तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल. चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: वो बताएं.
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में।

0: बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा, रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है ऐसे? क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात ये हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सब के लिए काफ़ी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी का अभी नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था। इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज़ हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहाँ पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा उस समय उस चीज़ के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं ज़ाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फ़ोन आते थे, वैसा फ़ोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा ने, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है, जिसके नीचे लड़के लड़कियाँ नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मज़े चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमिजिएटली ओबी वैन्स वहाँ पहुँची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज़ कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज़ में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो हम पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ
1: और
0: था।
1: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहां नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरे दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे, इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना, नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्हें
1: था
0: बहुत करीब से देखी हुई थी। तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था अंदर से।
1: बिल्कुल। यहां एक गाना सुनते हैं,
0: श्योर,
1: दो आंखें 12 हाथ का, ए
0: हाँ
1: मालिक तेरे बंदे
0: ऑफ
1: हम।
0: कोर्स।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

मोहम्मद रफी की आवाज़ में गोपी फिल्म की भक्ति रचना भी आपने सुनी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। लीजिए सुनिए चित्रगुप्त की बनाई तर्ज पर मैं चुप रहूंगी फिल्म की रचना। आवाज़ लता मंगेशकर की है।

अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में परदेसी फिल्म की भक्ति रचना भी आपने सुनी आवाज मन्ना डे की थी। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नरेंद्र चंचल चंद्रानी मुखर्जी और आरती मुखर्जी की आवाजों में खून की टक्कर फिल्म से माता की ये भेंट। संगीत सोनिक ओमी का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों जय हिंद। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आकाशवाणी धर्मशाला से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के युवा मंच कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं वीकली पल्स। दोस्तों, जरा पहचानिए ये आवाज किस वाद्य यंत्र की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को GI टैग मिला है और रणसिंघा इन्हीं 3 उत्पादों में शामिल है। जी हाँ, यही रणसिंघा जिसकी आवाज अभी आपने सुनी। दोस्तों, आपको बता दें कि रणसिंघा सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजनों में बजाया जाने वाला एक पारंपरिक पीतल द्वारा निर्मित विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय रणभूमि में रणबांकुरों में जोश भरने के लिए किया जाता था। शायद इसी कारण इसका नाम रणसिंघा रखा गया। इसके अलावा जिन 2 उत्पादों को GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है हिमाचल वुड कार्पिंग क्राफ्ट, आसान शब्दों में कहें तो मंदिरों और पुरानी पारंपरिक घरों में लकड़ी पर की जाने वाली जटिल नक्काशी, और तीसरा है हिमाचली हैंडमेड गलीचा, जिसे हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्तर पर हाथ से बुना जाता है और हमारी प्राचीन सांस्कृतिक और परंपरा को संजोए रखने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे GI टैग्स के बारे में, साथ ही करेंगे आपका मनोरंजन फिल्म संगीत के साथ। तो मनोरंजन का सिलसिला शुरू करते हैं, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

जी हाँ युवा साथियों, जीआई टैग की श्रेणी में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के 3 उत्पादों के विषय में हमने आपको बताया। हमें मालूम है कि हमारे बहुत से मित्र ये पहले से जानते ही होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य उत्पाद पहले से ही जीआई टैग सूची में अपनी जगह बना चुके हैं, जिनमें चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, हिमाचली चुल्ली तेल, कांगड़ा चाय, बासमती चावल, हिमाचली काला जीरा, कांगड़ा पेंटिंग्स, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने और कुल्लू शॉल का लोगो शामिल हैं। हमारे बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि जीआई टैग आखिर है क्या। हम आपको बता दें, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत एक विशिष्ट चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश से संबंधित होते हैं। इस टैग का उपयोग उन उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिनमें उनके उत्पत्ति स्थान से संबंधित गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, कार्यक्रम में आज है वीकली पल्स। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त संजीव के साथ। साथियों, देश भर में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु 56 जीआई टैग्स के साथ प्रथम स्थान पर आता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम रेशम उत्पाद, तंजावुर चित्रकला और मदुरई मल्ली विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इससे पहले जीआई टैग उत्पादों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता था, लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश 51 जीआई टैग उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, जिसमें बनारसी साड़ी और लखनऊ चिकन जैसे उत्पाद शामिल हैं। वहीं अल्फांसो आम और कोल्हापुरी चप्पल जैसे उत्पादों के कारण महाराष्ट्र 41 जीआई टैग्स के साथ तीसरे स्थान पर है।

दोस्तों, युवा मंच कार्यक्रम में आज बहुत ही रोचक बातें हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी कार्यक्रम का मजा आ रहा होगा। चलिए बातचीत को और रोचक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं देश में पहला GI टैग किस राज्य को मिला था? आइए आपको बता देते हैं, दार्जिलिंग चाय को आधिकारिक तौर पर भारत में पहला GI टैग प्रदान किया गया। दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से जुड़ा एक अनूठा उत्पाद माना जाता है।

युवा साथियों, हमारे देश में GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक पंजीकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। देश में GI टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। भारत में GI टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये रजिस्ट्री उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के अंतर्गत आती है, इसी के अधीन अपना कार्य करती है। आपको बता दें कि वर्ष 2026 तक हमारे देश में जारी किए गए GI टैग्स की संख्या 600 से अधिक हो चुकी है। ये टैग्स प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं, उत्पादकों की सुरक्षा करते हैं। ये GI टैग्स 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं, जिन्हें बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में GI टैग्स पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा, स्थानीय समुदायों को सहयोग और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथियों, कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

युवा साथियों, इसी गीत के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। युवा साथियों, जय हिंद।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम शामे गजल। 6:30 पर मिंजरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्देशक सत्येन बोस की फिल्मों से चुनिंदा गीत।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से ही रिली किया जाएगा कार्यक्रम हिम बीट्स 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिली किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रविवासरीय संगीत सभा रात 10 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा शाम 7 बजे और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9। कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे, कृपया रिली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: नमस्कार ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
6: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में नई सड़कों पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समान महत्व देना आवश्यक है ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। धर्माणी ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार ने सिरमौर जिला के संगड़ाह में पोलियो मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाए रखना है। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात के साथ सभी कार्य करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उप प्रधानों सहित बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ

0: उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने सहित रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सके और लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव, और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के उसको करे, और जितनी भी साइनेजेस हैं चाहे वो लेक में जिस तरह के कोई हादसा ना हो उसकी देखरेख के लिए जो भी नेसेसरी मैन पावर रखनी है, जो भी साइनेजेस लगानी है, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी करेगी, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे गजल।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: शामी गजल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए, सुनिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: शामी गजल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

इसी के साथ आज का शामी गजल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिंजरा।

0: कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाले सारे श्रोतियां दा खास करी असा दियां सखियां पैणा दा स्वागत है तिना दे अपने कार्यक्रम मिंजरा विच कजो कि एक कार्यक्रम ऐसा है जिस विच असा अपनियां सखियां कने ग्रामीण पैणा कने सिद्धी गलबात कर दे। इस वास्ते अहां दियां पैणा पता भी है भी इत्थों दा नंबर मिलाना पौंदा कने नंबर तिना तो वैसे याद है पर फिर भी दसी दिंदे नंबर है 01892-224-300-91। तो अहां दियां पैणा छुट्टियां दिन होंदा कम्मे कारे भी लगी होंदियां सौगी सौगी अहां दा जिहड़ा एक कार्यक्रम है इसकी भाल भी होंदी कने सह कम्मे कन्ने कन्ने ही थोड़ा जिहा समय निकाली लैंदियां ताकि सह अहां ने भी सीधियां रूबरू हो सकन। तो नंबर फिर दसी दे 01892-224-300-91 कने जी अहां दी कोई भैण अहां दे कार्यक्रम विच फोन करदी है अहां ने जुड़दी है तो अहां तिन्हां ने करनी है गलबात कने तिन्हें सुनाने फ्री मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत। पर दिखा जल तक फोन नहीं आता है तल तक भी अहां तुहां ने कोई ना कोई गलबात अहां करदे रहना है कजो कि कार्यक्रम ऐसा है भी तुहां तक कोई कम्मे की गल भी पुजे कने सौगी सौगी तुहां दा मनोरंजन भी होए। तो कार्यक्रम विच अज तुहां ने जुड़ी हो तुहां दी अपनी सखी अपनी भैण लक्ष्मी कने दिखा गलाने की देर होंदी मैं बोलदी भैणा बोलदे समय नहीं होंदा वक्त नहीं होंदा पर जिनी कढ़ना तुसी कोई भाना नहीं होंदा कने जरूर फोन दा जड़ा तुहां इस्तेमाल करना है ताकि तुहां अहां दी जिहड़ी गल है सिद्धी हो सके। तो देर नहीं लगानी है कने अहां चुकना फोन भी जे गल हो जाती है तो जरूर करनी है। हेलो हेलो
1: जी
0: नमस्कार जी
1: नमस्ते जी
0: ये सखियां भैणां दा कार्यक्रम है जी तिना वल फोन दे देन तां बड़ी मेहरबानी कीता फिरी गल नहीं होनी जी। नमस्कार जी
1: हां केडे उल लगी हेलो
0: दिखा हां बड़ी बारी शुरुआत विच ही गला दिंदे वी कार्यक्रम अहां दियां भैणां दा अहां दियां सखियां दा है ता चलो फोन करने का सारे चाह हों पर और भी काफ़ी कार्यक्रम हैं जितों अहां दे भाई भी अहां दे जिहड़े श्रोते हैं सर फोन करी सकते कने अपनी गलबात अपनी मनपसंद दे कोई लोक गीत हैं गीत है सुनी सकते। पर एक कार्यक्रम अहां बड़ा चुनिंदा रखा हों अपन भैणा वास्ते तो कोशिश करा भी या तो फोन कोई अहां दा भाई मिलांदा तो एकदम सह फोन बोलते अपन घर कुछ महिला वाल पकड़ाई देन ताकि अहें लगे भी अहां दे कार्यक्रम विच अहां दी भैण या सखी जुड़ी है। दिखा ये होंगे ना कई बार एक तो समय यह होंगे घट कने उपरे तो अगर जे आह सोचन भी हूँ हाँ तुहां ने पूरी गल साफ करिए तो इस विच भी हाड़ा समय खराब होंगे कने गलबात नहीं हो पाती। हैलो
2: हैलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
2: नमस्कार
0: जी जी अपना शुभ नाम दसने कौन बोला दे
2: कनिका
0: कनिका जी बड़ा प्यारा ना कनिका कुतां दे बोला दे
2: चमुंडा दे
0: अच्छा चमुंडा ते कार्यक्रम मिंजरा विच तुहां दा स्वागत है कने दिखा तुहां एकदम फोन विच हैलो कीती तां ही भी लग्या पई आहे गल करना चाहीदी ते तुहां फोन आपू मिलान तां मैं तां बोलदी बड़ी अच्छी गल है जे घरे कोई होर मिलांदा है तां कोशिश करा भी अपनी घरे दियां महिला ने गल करवा ना। क्या करदे तुहां पढ़दे की काम कार करा दे अच्छा, अच्छा, जी और करे क्या काम कार चलो अजकल पढ़ाई।

0: करने।
1: एक खेत है काम। हाँ
0: अच्छा, खेतां विच तां ताना दा ही कम होना अजकल ना,
1: जी,
0: लगाई रखे कि हली चलिया कम।
1: ना तक चलिया काम।
0: अच्छा, तो तुहां भी जांदे पट्टियां कि घरे ही रोटी पानी दा कर दे।
1: ऐसा भी जानते लगाना लगे हो।
0: अच्छा, दिखा बड़ी अच्छी गल है, परिवार बिच अगर सहयोग ने कोई कम हो तो मैं बोलती कम बड़ा जल्दी हो जाता ना
1: हाँ जी,
0: जी। बड़ी अच्छी गल है, ही कमांदे रहना कन्ने कन्ने पढ़ाई भी पूरा वक्त देना ताकि पढ़ाई बिच भी कोई बिघन ना पवे ना
1: हाँ जी,
0: जी। कार्यक्रम च फोन किया, तुहां दा बड़ा बड़ा धन्यवाद। तुहां सुनाना एक मिठा दिया लोक गीत।

0: हेलो, हाँ जी, कौन बोला दे? हाँ जी, नमस्कार
1: हेलो,
0: जी, कौन बोला दे?
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, नाम दसा जी अपना।
1: इशिता।
0: इशिता, आज हादिया छोटी छोटिया भैणा सखियां बच्चिया चुके आज बोलिया कार्यक्रम का पूरा आनंद लेने दा ना।
1: हाँ जी। अच्छा
0: अच्छा, कर मम्मी ने तेना गल कराई दिया, तू भी करा। क्या
1: जी। हाँ
0: कर दे तू?
1: जी।
0: वहां क्या कर दे? पढ़ दे
1: हाँ जी। एट।
0: वहां क्लासा च? अच्छा, तो
1: जी।
0: कराई दिया कुसी और सिने भी गल। हाँ
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार जी,
1: नमस्ते मैडम जी। और
0: नमस्ते
1: ठीक है
0: जी।
1: ना
0: ना दसा जी अपना।
1: मैम? मैं पूनम बोला दी
0: अच्छा, जगह का ना दसा?
1: मैम। हाँ, गना से बोल रहे हैं।
0: कणा, बगली कणा।
1: हाँ जी।
0: अच्छा जी, स्वागत है तुहां दा कार्यक्रम मिंजरा विच। कने इस वक्त तां रोटी रसोई दा काम भी चली पिया
1: हाँ
0: होना
1: जी।
0: ना।
1: हाँ जी। हाँ जी।
0: अच्छा जी, और क्या
1: मैं
0: कमांदे तुहां? इस
1: बस हाउस वाइफ। हाँ
0: खेतीबाड़ी की सिर्फ कर क्रिस्ती संभाल दे।
1: जी। हाँ जी। हाँ जी मैडम जी।
0: अच्छा जी, आजकल तां दिखा पट्टियां विच खूब जोरा शोरा ने काम चलिया
1: हाँ
0: ना।
1: जी। काम चल रहा मैम। बरखा नहीं हो रही है, अल्लाह कुछ
0: हाँ, बस बिना
1: नहीं।
0: बरखा तो थोड़ी मुश्किल हो यादी, पर चलो
1: हाँ
0: बोले
1: जी,
0: दे हैं
1: चलती
0: दसियां
1: बनी चलो।
0: बरखा। हाँ
1: अच्छा
0: जी,
1: जी।
0: पर न्याल तो कने बाकी जड़ा खड्डा कुल्ला दा पानी लगदा, अगर से आई सकदा तो इसका इस्तेमाल करी सकदे ना
1: हाँ जी।
0: जी। आहां दे
1: बरखा होंगी
0: कार्यक्रम
1: ता ही
0: सुन
1: हो
0: दे,
1: सकता। हाँ जी।
0: आहां दे कार्यक्रम सुन दे सारे। हाँ
1: हाँ जी मैडम जी। आज तो इतने दिन बाद हाँ जी याद आई कि अभी बनती हो मैं फोन करना है।
0: अच्छा, तो
1: बताओ
0: दिखा कन्ने कन्ने
1: टाइम
0: कमांदे भी
1: चेंज
0: रहा
1: करी
0: करा
1: थी है
0: कन।
1: ना।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी।
0: चलो अच्छी गल है, फोन लगी है तो मैं बोलती बड़ी अच्छी गल है भाई,
1: हाँ जी मैडम जी।
0: कुसी कुसी दा ही लगदा।
1: हाँ जी
0: अच्छा, और कुछ गलाना चाहते हो? न
1: मोता कुछ निकलाना चाहते, बस बरखा हो गया और काम
0: बरखा
1: करना
0: दी,
1: नहीं हो
0: चलो
1: पा
0: वहां
1: रहे।
0: भी इथू ते भी परमात्मा ने अरदास करनी भई बरखा
1: हाँ
0: हुई है,
1: जी।
0: जो कि किसान इस टाइम बड़ा तड़फ है ना
1: हाँ जी।
0: जी। चलो बरखा भी हुई यानी कने अहा जड़ा वादा किते होंदा भई कार्यक्रम विच लोक गीत भी सुनाने होंदे तुहां यूं,
1: हाँ जी।
0: तो सभी सुनाना, तो आवाज सुन देन मिठा दे लोक गीत कने कार्यक्रम च फोन करने तीन तुहां दा धन्यवाद जी।

0: जी नमस्कार जी। कौन
1: सर मैडम जी,
0: बोला दे, नाम दसा जी पहले। अच्छा
1: मीनू बोल रही नंगरेटे पे।
0: मीनू जी, स्वागत है तुहांदा कार्यक्रम मिंजरा विच। होर सुना, तुहां फोन मिलाया तो कुछ गलाना चाहते हैं?
1: बस मैडम जी क्या गलाना, फोन लगी है बड़े दिन बाद।
0: अच्छा फोन तो लगी है, पर कुछ मने विच भी तो होना वे, जब लगेगा तो हाँ क्या गल करनी है।
1: जी आज थोड़ी देर बरखा हुई है।
0: तो हाँ पाए हो ये कर दिखा, जेड़े बाकी पहले यहाँ दे फोन आए सब बोला दे बरखा नहीं हुआ थी ना,
1: थोड़ी बहुत ही हो थी पर वे हो ही
0: पर जिस साहब अगर खेती बाड़ी की गल करा तो थोड़ा मुश्किल है, पर
1: जी।
0: ठंडक कने गर्मी ते राहत वास्ती तो थोड़ी भी बड़ी होंगी।
1: खेती बाड़ी कर होंगी थोड़ी
0: हाँ जी
1: बड़ी बरखा होंगी ता ही है
0: जी तो हाँ खेती बाड़ी कर दे की करा ही गृहस्थी
1: जी।
0: चीज।
1: मैडम जी कर दे थोड़ी बे खेती बाड़ी दी।
0: अच्छा जी, कहाँ दे जेड़ा इतों हाँ कार्यक्रम चलिया, इतों के अखे बखे जितने भी ग्रां लगभग अहाँ दे भैणा ज भाई सब खेतीबाड़ी ने ज़्यादातर जुड़े होंगे।
1: ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत करी ले
0: चलो
1: जी।
0: अपने घरे गुजारे लायक हो, सब भी बड़ी होंगी कने इस दे कने कने परिवार संभालना सब भी बड़ी बड़ी गल होंगी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी। तां कार्यक्रम च तुहां दा फोन लगी है तो हाँ मैं बोलती अज बड़े खुश होने,
1: हाँ जी मैडम जी
0: कने कार्यक्रम जो लोग गीत चले होते ना भी सुनते रहा, कने ही कार्यक्रम बिच फोन कर दे रहा करा।
1: ठीक है मैडम जी।
0: धन्यवाद जी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से,

0: एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी तदिखा कार्यक्रम भी चल रहा तुहां दा अपना मिंजरा सौगी सौगी, हाँ लोक गीत झनकार लोक गीत भी तुहां तक पजा देन। कने ये जड़ा कार्यक्रम है हाँ दियां सखियां भैणां दा अपना कार्यक्रम है, इस वास्ते हाँ रविवार मतलब कि एतवार दा दिन चुने हुंदा गलाने दा दिन हुंदा सब भी छुट्टी वाला दिन है, तसलियां हाँ दियां भैणां हाँ ने जुड़ी सकदियां, पर तसली सिर्फ गलाने हुंदी, छुट्टी वाला दिन है तो हाँ दियां भैणां दा कम मैं बोलती दुगना हो जांदा, कजो कि बच्चे बड़े सब घर होंगे, कने छुट्टी तो चलो सै फिर भी घर संभाल दियाँ लेकिन कम दिन थोड़ा जहा बधी आंदा। हलो हलो हाँ जी कौन बोला दे, दिखा सखियो तू हाँ जो भी फोन आ दे तू मिलांदे न कने मिली आंदा मैं बोलती बड़ी अच्छी गल है, पर कोशिश करा भी जे एक तो सिग्नल होवे या मिली या फोन तो खुली के गल करना चाहिए, कजो कि शर्म वाला जमाना हूँ बिल्कुल नहीं रहा, कने फोन भी मैं बोलती तू पागाने का लगता तो दिखा फिर तो कुसी का फोन आया, कने हाँ उम्मीद करनी भाई ना हाने गल करनी है। हैलो हाँ जी हैलो फोन पता नहीं कुछ कारण गल नहीं हो पा दी है, कने फोन मिला था तो जरूर है पर गल बात नहीं हो दी है, तो हाँ उम्मीद करनी है भाई जेड़ा भी फोन हो है सह सखी भैन हाँ ने गल बात कर रहे हैं, तो दिखा आह गल करा दे अपने घर घ्रिस्थी की, तो घर घ्रिस्थी का जोड़ा भी सामभ संभाल है सर ज़्यादातर अहद भैन के ही हथे होंगी, कुछ घर कई जगह अहद भाई भी पूरा सहयोग देंगे घर घ्रिस्थी संभालने, पर जे ज़्यादा गल की जाए तो ज़्यादा अहद सखियाँ भैन का ही इस विच मुख्य जड़ी भूमिका होंगी। हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी नमस्कार जी,
3: नमस्ते मैडम जी,
2: अपना शुभ नाम दसा कने कुथु ते बोला दे।
3: हाँ जी हाँ जी अनु बोला ही मैडम जी ज्वाला जी ते।
2: अच्छा ज्वाला जी ते जी अनु जी तुहां दा स्वागत है हाँ दे अपने कने तुहां दे अपने कार्यक्रम मिंजरा विच। हाँ जी और सुना जी।
3: सब ठीक है मैडम जी बहुत बढ़िया।
2: हाँ हाँ भी ठीक, कने कार्यक्रम विच फोन किया तो कुछ खास गलाना हुआ है या कोई अपनी गल सांझी।
3: हाँ जी रोटी बना दी मैडम जी, चलो फोन कर लेंदी।
2: कने दिखा मिली भी गया फोन है ना।
3: हाँ जी मिली भी गया।
2: तो दिखा कुछ सोचे होगा भी गलबात करनी की लोग गीत सुनना सीधा।
3: नहीं नहीं गलबात भी करनी है लोग गीत सुनना मैडम।
2: लोग गीत तो हां यहां आपू सुनाई देना पर कुछ हां गलाना चाहते कुछ तो गला।
3: मैडम जी गर्मी बड़ी भारी है बारिश नहीं हो रही इंतजार लग गया बारिश
2: तो दिखा हां तो पहाड़ा दी ठंड ठंडी ऑटो च बैठे पर तुहां जे ज्वाला जी दी गल करा दे तू तो मैं बोलदी तू ते दो गुना ज्यादा गर्मी होनी है। गर्म हो जांदी
3: पर
2: दिखा जी तुहा रहन सहन तुहा रह देतने साला ते तिथु दे रहने आले होंगे ता तुहा शायद थोड़ा देया तिसने ढली चुके होने ना। गर्मी तो है जी जी बिल्कुल है कने बरखा दी न्याल सारे ही है।
3: हां जी जी बारिश होइयां तां ठीक है
2: बिल्कुल होना चाहिए हुण तां बड़ी आती हुई है बोलदे हुण तां सबर नहीं है कने बरखा होना बड़ी जरूरी है, गर्मी च भी राहत मिलनी कने खेतीबाड़ी दे कम भी आंदे बड़े पिछे होवे दे।
3: हां जी
2: जी तां कार्यक्रम च तुहां फोन कीता तुहां दा धन्यवाद जी।
3: हां

0: एक कामयाब कने खुशहाल परिवार दे पिछे अगर कुसी सुपर हीरो दा नहीं बल्कि एक घरे दी जिहड़ी सुपर वूमेन होंदी तिसा दा ही हत्थ होंदा, जिहड़ी प्यागा सब ते पहले उठदी कने राती सब ते लेट सौंदी। कने गलांदे भी हन मुश्किलां दीआं घड़ियां विच जालू जे घरे दी महिला असी के गलाईदा है कि सब ठीक होई आना तां सारे परिवारे जो ताकत मिलदी कने सारा परिवार खुशहाल रहिंदा। इन्हां शब्दां कन्ने चलदे चलदे एक फोन सुनी लैंदे ने जो कि समय भी घटा दा है। हैलो हैलो, हाँ जी नमस्कार जी, ना दसने जी अपना कन्ने कुछ ते बोला दे, थोड़ा समय घट है तो जल्दी बोली ने। जी जी कुछ ते बोला दे, शाहपुर ते जी स्वागत है तुहांदा कार्यक्रम विच। कने चलदे चलदे तुहांदा फोन लग गया है तो उम्मीद करनी है भई अगले रविवार जो तुहांदा फोन सब ते पहले लगे कने तुहाने ज़्यादा गलबात भी होए कने मिठा मिठा प्यारा प्यारा लोकगीत भी हाँ तुहां तक पजान जी। कार्यक्रम च फोन किया तुहांदा धन्यवाद जी।
1: हाँ

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारु सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एबीसी में

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाइया जो भैन जो बच्चे कने बुढ़िया जो भी राम राम कह के सारे इस वक्त जरा किट्ठे बैठी करी प्रोग्राम
1: बिल्कुल
0: सुनने दे कने सोगी है ना सन्नो ताई
1: सन्नो ताई दिखा कने कने ही है सन्नो ताई जो दा पाइए नहीं कने ठीक गलाए पे संजा दा वक्त ऐसा होंदा पे यहां निकला सकदे कोई बार चलो घर च कोई कद माण हो सकदा बार
0: हाँ
1: ज्यादातर परिवार इस वक्त इकट्ठा ही होंदा।
0: ओ बिल्कुल जी कने घर बैठे होंगे संजे टाइम मैं कने इं क्या कि ऊपरी इलाके की गल करिए तू बारिश तो हल्की हल्की जरा सह होंगी रहा थी दिन भी
1: जी
0: कने कुछ मध्य इलाके जड़न मारे थे तू बरखा हाली थोड़ी घट हुआ दी है कने निचले इलाके च भी कुछ कुछ है कने कुछ
1: हाली
0: कुछ नहीं
1: मतलब
0: है।
1: हाँ बिल्कुल बड़े लोग तरस हो कने
0: हाँ
1: जरा खेतीबाड़ी का काम ऐसे भी थोड़ा दिया लेट हुआ था।
0: बिल्कुल जी हाँ दी मुख्य फसल धान की फसल जरा ऐसा बरखा बिच ही होंगी है ना जी कने
1: जी
0: कम कार बरखा बिच ही करना पौंद हाँ दे किसान भाई कमर कसना पौंदी है कने बरखा बिच ही जरा ऐसा मच्छा लगना पौंदा होंदा तो
1: बिल्कुल
0: अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल रखना कने बिल्कुल तंदुरुस्त रहना क्योंकि गां गां जरा ऐसा कमे आले दिन आए न।
1: जी कने दिखा अपना सेहता का ध्यान रख गए ताए तुहां जे लाड़ू सगाड़ूं दी गल होवे चाहे पट्टियां दी गल होवे ताए तुहां खेतीबाड़ी विच अपन तिना सारे दा हाथ बटाई सकदे।
0: हाँ बिल्कुल जी कने दिखा सनू ताई जियां कि हाँ गल करा जी कि बरखा जड़ा ऐसा कुथी कुथी हो दी कुथी नहीं हो दी है ना जी
1: जी
0: तो इस गल्ला दा पता जड़ा ऐसा सरकारा जो भी हुंदा कने सरकारा जो चिंता हुंदी कि मतलब अहां दे जड़ा जे किसान भाई हैं ना तिन्हां जो अगर कोई ऐसी समस्या हुंदी है तो तिन्हां वास्ते ऐसा कोई योजना भी चलाई
1: कोई
0: दे।
1: कई तिना
0: हाँ
1: योजना सोची होनी है पहले ही भी जे ऐसी कोई दिक्कत आई आंगी हाँ तिना दा किसाना दा क्या मदद क्या हल करी सकदे ना।
0: जी तो इस वास्ते एक योजना चली हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना जी
1: जी
0: तो सूँ तो दिखा इस योजना बच्चे क्या है इस योजना बच्चे यह है कि असंदा जरा किसान भाई है ना सह जे जानकारी रखी सकता कि इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 जो भारत सरकार ने की ही कने इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों जो सिंचाई की बेहतर सुविधा देना कने पानी का सही तरीके ने उपयोग जरा सह सुनिश्चित करना।
1: करना
0: हाँ कने इस कुछ एक चीज़ा ने जी कि हर खेत जो पानी जरा सा उपलब्ध कराना है ना जी
1: बिल्कुल जी
0: अगर इस योजना का फायदा लेना तो हर खेत जरा सा पानी पुजना है
1: बिल्कुल
0: कने पर ड्रोप मोर क्रोप इसे बोलते यानी कि पानी की हर बूंद का सही उपयोग जरा ऐसा है होना चाहिए।
1: इसते हाँ अच्छा उत्पादन ले सकन
0: बिल्कुल जी
1: कहे कि व्यर्थ पानी भी जे कई बारी मता होता ऐसा हिसाब है ना भाई मता पानी फसला ही चली आंगा तो सभी नुकसान करदा कने नहीं होंगी बरखा तो भी नुकसान।
0: हाँ कने ड्रिप कने स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाइयाँ जरा सा इस बढ़ावा देंदियाँ ने कने वर्षा का पानी जरा इकट्ठा करके जल संचय करना कने खेतों की लागत घट करके जरा सा उत्पादन बढ़ाना।
1: जी बिल्कुल बड़ी अच्छी गल दिखा बरखा का पानी अगर जो किसी भी तरीके ना हाँ कट्ठा करी लेंदे न संजोई लेंदे न सह ऐसे बुरे वक्त विच हाँ सही पानी अपनी खेतीबाड़ी विच बरती सकदे।
0: बिल्कुल जी कने इस ही ड्रिप कने स्प्रिंकलर सिंचाई जरा इस विच अनुदान जरा से मिलता कने पानी की बिजली की जरा से बचत घट हुंदी है कने फसल की गुणवत्ता कने उत्पादन च जरा से सुधार हुंदा है।
1: बिल्कुल कने दिखा जो दा भाई हाँ दा पहाड़ी इलाका है ते तू हर जगह पर खड़ नालू नहीं पुजदे तीस मतलब स्तर पर से नहीं है ना तो कई जगह से चेक डैम बने हो कई जगह से सौर सिंचाई योजना भी मदद करा दी।
0: हाँ बिल्कुल कने घट पानी वाले इलाके विच भी जरा सा बेहतर खेती की सुविधा जरा सा सुनिश्चित होंगी है तो
1: बिल्कुल
0: दिखा इस विच ऐसा है सानू ताई कि अगर पानी नहीं होता है खासकर जंगल इलाके वास्ते ये योजना बड़ी ही उपयोगी
1: बिल्कुल
0: है
1: हाँ
0: ना
1: जी
0: जी
1: ठीक
0: जितों
1: ठीक
0: की बरखा पर खेती निर्भर करती है कने बरखा अगर टाइमे पर नहीं होंगी है तो इस योजना का फायदा जरा सा आ किसान कने बागवान साथी ले सकते हैं
1: जी
0: कने
1: जी
0: आवेदन जरा सा कि करना भारत का किसान होना चाहिए सह आवेदन कर सकता कने उस बाल जरा ऐसा खेती योग्य हो जमीन होना चाहिए।
1: बिल्कुल कने तुहां कुसी भी सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ भी जेड़े तुहाड़े जिला कार्यालय है तिथु जाइए तुहां आवेदन करी सकदे।
0: कने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तां जरा सा लागू बने तेना जो भी जरा सा पूरा करना कने दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए जियां कि सां जो पता ही है कि दस्तावेज हर जगह लगते हैं जियां कि आधार कार्ड हुई है पहचान पत्र हुई है भूमि के कागज हुई है जमीन के कागजात हुई है कने बैंक की पासबुक जरा सा सारी जगह लगती है सोगी सोगी।

0: मोबाइल नंबर तुहारा अपना होना चाहिए था, है ना जी,
1: जी बिल्कुल
0: कना पासपोर्ट अगर कुछ फोटो होना चाहिए, ये सारे तुहारे सारे अगर तुहारे फार्म
1: कागज
0: होंगे
1: जी जी
0: तां जिहड़ा है तुहां आवेदन करी सकदे।
1: कने दे दिया योजना का तुहां लाभ भी तां ही ले सकते जल तुहां बल कागज पत्र पूरे होंगे।
0: तां ऐसा सुनोता है कि तुहां क्या करना कि जिले के कृषि विभाग या कृषि अधिकारी ने संपर्क करना,
1: जी
0: कने ऑनलाइन आवेदन भी सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट पर जाना जी, यहाँ दे लोक मित्र केंद्र होंगे ना
1: मैं
0: सब
1: बोला दी
0: भाई बड़े
1: सह
0: समझदार।
1: वक्त तो हूँ चली है भाई, पहले सोचते हाँ करे भी कुतू जाइए कुछ ने गलाइए कने कुछ ते
0: हाँ
1: हूँ तो मैं वो घरे का बच्चे बच्चे पता है भाई फोन बिच हर जानकारी मिला दी
0: बिल्कुल, कने दिखा सानू तां मैं दिखा ग्राएं ग्राएं च जिहड़ा लोक मित्र केंद्र खुले ना सारे ही लोग बड़े अच्छे ने, कने तिन्हां जो पता कि किसान तो कम्मा कराना आउंदे ना, तो बस किसान भाई इंज बोलना कि मैं इस
1: फलाना काम
0: वास्ते
1: करना
0: फलाना
1: है
0: कम करना, सब आपू
1: जी
0: ही कराई करेंदे सारा कम,
1: कने
0: कोई भी समस्या
1: अद्धे
0: नहीं
1: ते ज्यादा
0: जानी
1: काम तो
0: होंगी।
1: लोक मित्र आले निपटाई दे बस थोड़े दे कम में पिछा है दफ्तरां दी दौड़ धुप करना पौंदी ता
0: बिल्कुल
1: इतना कितना बोल दे कोई चीज पानी है ता इतना कितना प्रयास करना पौना
0: बिल्कुल जी, प्रयास करके ता ही जरा प्रयास है सफल जरा सह होंगे ने,
1: जी
0: है ना जी। कन्या दिखा इससे सोगी सोगी असा जी बरसात का मौसम है ना,
1: जी
0: इस बीच थोड़ी कोशिश करनी कि पौधरोपण जरा से करी देना,
1: बिल्कुल
0: अजकल
1: करना
0: अगर पौधरोपण करगे तो जियां जियां बरखा गां बदनी है कन्या जड़ा जड़ा सह पेड़ दियां पौधे दियां मजबूत जड़ा सोना लगी
1: जो
0: पैनिया,
1: कि
0: है ना जी।
1: मानसून भी अपना रुख हूं करना लगी पी हो है तहां त्योहार फायदा लेना कने कहा ठीक लाए भी पौधा रोपण जरूर हाँ
0: हाँ
1: करना है
0: करना बिल्कुल जी, पौधा रोपण करके ना अजकल करके, अजकल तो पौधा रोपण का फायदा है बरसाती बोलते हर चीज़ लगी जाती है ना जी, तो
1: जी
0: पौधा रोपण का कार्य जरा सा बरसाती ही असं करते हैं, कहना खास कर पर्यावरण का अगर हाँ ख्याल रखिए तभी अगर असा कोई बाग बगीचा लगाना है, औषधीय पौधे लगाने हैं ना जी, कहना फलदार पौधे लगाने हैं, कोई बगीचा अपने घर वक्खा लगाना है, फुलों का
1: ये
0: बगीचा
1: बड़ा
0: लगाना
1: अच्छा
0: है।
1: समय चल रहा कने
0: हाँ
1: आह लंघे जब पर बरसाती लगाएंगे तो कई बार बरसात इतनी ज्यादा हो जाती पिसे बूटा नहीं टिकता फिरी तो
0: बिल्कुल
1: ये
0: जी
1: जड़ा सही समय है तुहां पौधा रोपण करा
0: हाँ
1: चाहे अपने फायदे साबे पेड़ पौधे लगा चाहे कुथी मिट्टी कटाव जो रोकने वास्ती
0: हाँ
1: ला
0: बिल्कुल जी, फुल लगा के ना यहाँ दे लोग गायक भी यही बोलते, एक
1: जी
0: फुल कुंजुबे दा
1: बिल्कुल
0: लाड़ी दिए पग्गा पर लाना था, वह सुन
1: हाँ
0: दे यही लोकगीत।
1: बिल्कुल।

0: जो दा पाई
1: हाँ जी
0: कुंगुए दा फूल तो हाँ लुआई था ना
1: हाँ जी
0: कने बड़ा बांका लग गया कुंगुए दा फूल
1: बिल्कुल जी कने दिखा हाँ दे लोग गायक हुंदे ना कने आपू ही गांदे आपू ही बजांदे
0: बिल्कुल ही ना बिच सारे हुनर कने दिखा जालू पुरानी चीजा थी ने बच मैं बोलदी कि शुद्धता बड़ी थी
1: इस गायन जो बोलदे मुसादा गायन
0: मुसादा दिखा जी
1: कने खंजरी रवाना जेड़ा सा इना दा साज हुंदा
0: हां
1: कने जी ता मुसादा गायन जेड़ा सा हां सुनया कने दिखा हुन अगली गलबात भी असा करनी है
0: बिल्कुल करनी है पहले गल ये करनी वे दिखा तन्ना ते तुहां बेले होए कि नहीं होए
1: भाई तन्ना दे असा ए है कि उरे ते थोड़े दे बेले होए ना जी कजे तो जुत जी जिंगे वर्खा होदी रहदी तिंगे तिंगे जेड़ा सा असा काम करदे
0: वर्खा ले लाले ला दे कने जेड़े मातड़ा हली अन्ना से सै अंबरे पहा लाई जन टक
1: हां जी बिल्कुल
0: कालू बरगा दसा कुत कीजे चार खुंबे लाने तहां लाइए ना
1: हां सही गल है कने दिखा अपने अपने इलाके के हिसाब ने जिंगे जिंगे बरखा हुआ कर दी तिंगे तिंगे जड़े ऐसे कम कार हुआ करते हैं ना जी
0: बिल्कुल जी
1: कने बरसाती के होंगे कि कुछ एक कम कार ऐसे होंगे कि सारे करना पौंदे कहना जी सह हों जी अस बरसाती सब्जियां जरा लगानियां ने सह पहला लगाना पौंदी है बरखा के होने के पहले पहले है ना जी
0: मतलब हूँ धान आला तो लगभग कम निपटे समझ
1: बिल्कुल
0: पर गांह की तैयारी भी अं पहले दिमागे रखना पौनी
1: बिल्कुल कने कई बार क्या होंगे कि असं जानकारी कोई दीए तो अस उतनी जानकारी दे सकते जितनी किसान जो है क्योंकि किसान भाइयों सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी होंगी लेकिन कोई विशेषज्ञ आई करी जलू कोई जानकारी देंद ना तो सह उसी चीज़ का विशेषज्ञ हों
0: बिल्कुल सर गल और पक्की हो जाती कने जो विश्रोते आते किसान तिना गल सुनते ना तो मैं बोलती सह कई कमें दल डायरी लाई होंगी तिना करें
1: तो बिल्कुल जी अपनी डायरी क्ढी लिया कने लिया जानकारी कि सब्जियां जो बरसाती के मौसम असं कि लगानी
0: जी
2: सारे सुनने वाले किसान भाइयों को मेरी यानी गिरिंदर सिंह ठाकुर की राम राम और डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में
3: धन्यवाद
2: तो हमारे श्रोताओं को हमारे किसान भाइयों को ये बताओ कि जो आगे वाला आने वाला मौसम है डॉक्टर साहब
3: जी
2: तो उसमें जो है कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती बाड़ी जो है की जा सकती है जिनसे जो है अच्छी पैदावार मिल सकती है
3: जैसा कि किसान भाई अभी जो अभी सीजन आ रहा है ये आपका बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में हम लोग जो सब्जियां लगाते हैं जो लगाने के लिए तैयार होती है टमाटर हो गया आपका शिमला मिर्च हो गया बैंगन हो गया भिंडी हो गई आपकी ठीक है इस प्रकार से आपकी रास बीन भी हम लगा सकते हैं साथ में कद्दू खीरा घिया वगैरह इन चीज़ों को आप अपने इस टाइम बरसात के मौसम में इन सब्जियों की आप खेती कर सकते हैं
2: जी तो आजकल तो डॉक्टर धर्मेंद्र काफ़ी किस्में जो हैं सब्जियों की तैयार हो गई हैं तो जैसे घिया कद्दू प्रजाति फसलें हैं
3: जी
2: तो ऐसे में जो है जो पछेती किस्में भी कुछ अलग किस्में होंगी इनकी
3: हाँ इसमें जो बरसात के मौसम में जो हम आमतौर पर जो सब्जियां लगाते हैं क्योंकि बरसात में क्या होता है कि इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और जो खेतों में भी खड़ा हो जाता है और इसलिए हम कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि बौनी किस्मों की अपेक्षा अनियमित ऊंचाई वाली जो भी आपकी वेराइटीज़ हैं किस्में हैं या हाइब्रिड्स हैं उनको लगाना चाहिए जैसे कि आपका इसकी बात करें हम खीरे की बात करें तो इसमें हमारे पास जो जैसे पूसा संयोग किस्म है या KH1 है KH2 है इस प्रकार की आप वैरायटियों को लगा सकते हैं इसी प्रकार से आपका करेला है करेले में भी आपकी सोलन हरा सोलन सफ़ेद जैसी वैरायटी हैं जिनको आप बरसात के मौसम में हम अपने किसान भाई लोग इसको लगा सकते हैं
2: जी यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो कि किस्में जो हैं कौन कौन सी हैं उन्नत किस्में उनका जो है लगाना जो है बहुत ज़रूरी है जानकार होना ज़रूरी है किसान भाई को
3: जी जी जी
2: जी तो इसके अलावा जो है भिंडी की फसल भी लगाई जाती है
3: भिंडी की फसल भी आप लगा सकते हैं भिंडी के लिए सबसे
2: अच्छी किस्म है
3: अच्छी किस्म है इसमें हमारे पास जैसे अभी अपने पालमपुर से भी 2-3 वैरायटियां अभी निकली हैं जो अभी खैर अब इसमें नहीं आई है तो जैसे ही वो आएंगे तो उनको भी किसान भाई उनका भी हम आप किसान भाइयों का उनसे उनका बीज पालमपुर यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं और एक हमारी जात से भी एक नई वैरायटी रिलीज हुई है
2: और कौन सी सब्जियां जो है जिनकी खेती बाड़ी जो है इस मौसम में की जा सकती है
3: हाँ जैसे अभी मैं इसकी बात कर रहा था आपके टमाटर की
2: जी
3: तो टमाटर की फसल जो हम लगाते हैं तो टमाटर की फसल इस टाइम हमारे पास जो अनियमित ऊंचाई वाली जो किस्में हैं वो किसान भाइयों को लगानी चाहिए अब अनियमित वाली की बात की जाए तो उसमें कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं कि किसान भाई लगा तो लेते हैं बिना कई किसी जो एक्सपर्ट होते हैं हमारे चाहे HDO हैं या फिर साइंटिस्ट हैं वो बाजार से डायरेक्ट ले लेते हैं परंतु उनको ये पता नहीं होता कि वो अनियमित ऊंचाई वाली है या बौनी किस्म की है और जो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अनियमित ऊंचाई वाली जो फसलें हैं खासकर बरसात के मौसम में तो उनको जब आप जब वो थोड़ी मतलब कम से कम कोई 2-3 फुट की हो जाती हैं तो कम से कम 15 सेंटीमीटर की जो नीचे जमीन से जो उसकी ऊंचाई होती है उसके सारे पत्ते वगैरह उसको निकाल देने चाहिए क्योंकि क्या होता है जब बरसात पड़ती है बारिश होती है तो उसके छींटे पत्तों के ऊपर गिर जाते हैं जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर धब्बा रोगा जाता है या कोई छोटे फल लगे होते हैं तो उनके ऊपर गिरेगा तो उसमें फल सड़न रोग भी कई बार लग जाता है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अनियमित ऊंचाई वाली फसलों को 15 सेंटीमीटर नीचे जमीन से ऊपर तक उनके पत्ते निकाल दें। और साथ में एक सबसे जरूरी बात यह है कि वहाँ पर आपने मल्चिंग जरूर करनी है
2: जी, यानी कि उसको जो है पत्तों से ढक दें या प्लास्टिक की शीट से।
3: हाँ जी हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आप जब आपकी बारिश पड़ती है तो उसके छींटे पत्तों के ऊपर नहीं पड़ेंगे, ना ही आपकी फलों के ऊपर वो छींटे पड़ेंगे मिट्टी के।
2: डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है और कौन सी फसलें जिनके जो है खेतीबाड़ी जो है सब्जियों की जो है खेतीबाड़ी की जा सकती है बरसात के मौसम में या बरसात आने वाले मौसम में?
3: बरसात के मौसम में आप कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे आपका चप्पन कद्दू हो गया जिसको समर स्क्वैश भी हम बोलते हैं, उसको भी हम लगा सकते हैं। परंतु उसमें एक चीज़ का ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए कि जब भी आप ये कद्दू लगाते हैं या घिया लगाते हैं तो जो आपकी जहाँ भी उसको
2: मतलब जो क्यारी जो है उथली होनी चाहिए,
3: उथली होनी चाहिए उसमें,
2: जमीन से कितनी
3: जमीन से कम कोई 20-25 सेंटीमीटर थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है पानी जब बरसात पूरे उसमें आती है तो पानी कई बार वो अपने हमारे जितने भी हमने बूटे लगाए होते हैं या उसमें पौध लगाई होती है या फिर अपने जो भी सब्जी लगाई होती है उसमें सड़न रोग लग जाता है
2: जी।
3: और उसमें सबसे जरूरी बात है कि आपका पानी इसमें खेत में नहीं खड़ा होना चाहिए,
2: यानी कि पानी का निकास जो है सही स्वरूप में होना चाहिए,
3: जल निकासी की पूरी अच्छे ढंग से उसकी मतलब पूरी
2: व्यवस्था
3: होनी चाहिए उसमें
2: जी। तो इसके अलावा जो है कई बार होता है डॉक्टर साहब फल छेदक मक्खी लगती है, ये फल छेदक प्रजातियों की?
3: हाँ, फल छेदक पंख जो मक्खी होती है ये बहुत अपने जो फल होते हैं इनके ये जिस टाइम फूल लगने शुरू होते हैं तो उसी टाइम ये मक्खी उसके अंदर घुस जाती है और वहाँ पर जाके अंडे देती है। और अंदर से उसको जैसे जैसे उसके जो मक्खी मतलब बड़ी होने शुरू होती है या इसको प्यूपा बोलते हैं तो जैसे वो अंदर से उसके गुदे वगैरह को खाना शुरू कर देती है तो इसके कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया होता है बेट, मेलाथियन का बेट होता है तो मेलाथियन का उसको गुड़ के साथ मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और परंतु इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें किसान भाई क्योंकि एक बहुत जहरीली एक बेट है ये
2: दवाई है,
3: जी। तो इसमें जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको गुड़ डालने का बेसिकली जो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है वही होता है कि वो बरसात के टाइम क्योंकि बरसात किसी टाइम भी हो सकती है तो उस टाइम ये उसके साथ फल के साथ वो लेप है वो चिपक जाना चाहिए। और दूसरा जब इसका तोड़ान करते हैं तो कम से कम आप 7-8 दिन कम से कम आप वैसे तो 12 दिन तक नहीं तोड़नी चाहिए परंतु इसका जो असर होता है मेलाथियन का ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है इसलिए कम से कम 7 दिन तो रुके किसान भाई उसके बाद उसकी तोड़ाई करें और उसके बाद मार्केट में इसको ले जाएं।
2: तो डॉक्टर साहब सब्जियों की खेती बाड़ी जो है सही स्वरूप में की जाए हम उन्नत किस्में लगाते हैं तो उसके अलावा भी जो है कई बार क्या होता है कि अगर हम खेती बाड़ी सही स्वरूप में नहीं करें बीज अच्छा लिया है हमने तो कहीं ना कहीं हमारी जो है मेहनत बेकार जाती है तो ऐसे में जो है इन फसलों के लिए जैसे कद्दू प्रजातीय फसलें इनके लिए जो है क्यारी कैसे तैयार करनी है, चप्पन कद्दू के लिए कैसे करनी है, टमाटर के लिए कैसे करनी है, पनीरी कैसे वाले खेत जो है वो कैसा होना चाहिए जी?
3: इसमें ये है जैसे कि पनीरी की बात करें जो आपकी जैसे आपका शिमला मिर्च हो गई या टमाटर हो गया या आपका बैंगन हो गया इसमें तो आपको नर्सरी के अंदर ही आपका सारा जैसे जो हम जो नर्सरी का जो साइज होता है वो 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी होनी चाहिए। और इसको जब भी आपने तैयार करना है नर्सरी को तो उसको उस ढंग से तैयार करना कि आपके वहाँ पर क्योंकि बरसात में एक जो फिल्ले बोलते हैं उनका बहुत ज़्यादा इनका अटैक होता है तो ये क्या करते हैं कि जहाँ भी आपके नर्सरी होगी छोटे छोटे बूटे होंगे तो उनको खा जाती हैं तो उसमें आपने जो उसका नर्सरी का जो आपका एरिया होता है क्षेत्र होता है उसमें आप फैन

0: जो दवाई होती है उसको आप चारों तरफ उसको कर दे ताकि वो नर्सरी को नुकसान ना पहुंचाए। तो
1: जी
0: इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो आपकी रेतीली मिट्टी ज़्यादा बहुत बढ़िया रहती है नर्सरी के लिए। और रही दूसरी बात, जो आपके जैसे आपके कद्दू वर्गीय सब्जी होंगे, करेला हो गया या घिया हो गया, कद्दू हो गया, तो इसकी जो हम नर्सरी तैयार करते हैं ये हम पॉली बैग्स में तैयार करते हैं। तो उसके लिए मिश्रण जो तैयार करते हैं हम आमतौर पर, तो वो आपका मिश्रण उसमें दो भाग आपका गोबर की गली सड़ी खाद, एक भाग आपका मिट्टी, एक भाग आपका रेत, ये इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जिस भी लिफाफे में आप लगाते हैं उसमें छेद जरूर करने हैं, 15-20 छेद किसी कील के साथ कर दें, क्योंकि अगर जो आप उस टाइम इसमें जब आप इसको मिक्सर को डाल देंगे तो जब पानी देंगे तो पानी कई बार उसमें रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका बीज सड़ जाता है। और जो आपका जैसे आपका खीरा है, खीरे के बीज में क्या दिक्कत आती है कि उनकी दोनों तरफ के जो सिरे होते हैं वो बड़े पैने होते हैं, उसमें ये पता नहीं लगता है कि इसका मेन पॉइंट कहाँ, जहाँ से जर्मिनेशन होती है कहाँ को, इसलिए आप किसानों को नहीं लगे पता कि इसमें इसका इसको कैसे लगाना है। तो उसको आप सीधे बिल्कुल फ्लैट
1: के सीधी होनी
0: समतल
1: चाहिए,
0: समतल
1: समतल होनी चाहिए।
0: समतल समतल के उसमें आप बीज को उसमें थोड़ा सा दबा के, उसके बाद अगर जो आपने इसको उल्टा लगा दिया कहीं, जो उसका जो जहाँ से आप जर्मिनेशन जो उसका
1: अंकुरण
0: अंकुरण
1: होता
0: फटता
1: है
0: है, अगर जो उसको नीचे चला गया तो पहले वो नीचे को जाएगा फिर ऊपर को आएगा, तो उसको एक फोटोट्रॉपिज्म इफेक्ट होता है। फिर उसमें थोड़ा टाइम, फिर जब सारे जितने भी आपके पौधे हो बराबर बराबर उसकी वृद्धि हो बराबर नहीं होगी, तो
1: जी
0: कुछ पहले तैयार हो जाएंगे कुछ बाद में तैयार हो जाएंगे, तो इससे किसान भाई थोड़ा सा इससे थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें।
1: जी तो पनीरी वाला अगर खेत जो होगा तो उसमें जो है किस प्रकार के जो है कि पनीरी तैयार करनी है, तरीकाकार क्या होना चाहिए?
0: उसमें एक जो सबसे जरूरी बात है, एक तो आपका जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो उसका ध्यान रखने योग्य हैं, एक तो आपकी कि आपने नर्सरी कहाँ लगानी है, तो ये घर के आसपास हो, और दूसरा मिट्टी रेतीली हो, तीसरा आपके पानी का जो
1: निकासी है
0: निक
1: और साथ में जो है
0: हाँ
1: पानी का जो साधन है वो
0: साधन
1: भी।
0: है वो भी आपके पास होना चाहिए, और तीसरा ये है कि जब आप इसको लगाएंगे तो ऐसी जगह लगाना जहाँ छायादार जगह हो, इसको हमेशा खुले जगह जहाँ पर धूप पूरी आती है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरा उसमें एक और कर सकते हैं कि पॉलीटनल्स के अंदर, जो इसको पॉलीटनल्स बोलते हैं, उसके अंदर भी आप
1: छोटी
0: नर्स
1: छोटी
0: हाँ
1: जो
0: छोटे
1: पॉलीथीन की होती
0: जी,
1: है।
0: तो नर्सरी के हिसाब से जैसे 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर की, उसी हिसाब से आप इसकी जो इसकी लंबाई है, तो नर्सरी की जो पॉलीटनल्स है उसकी 3.5 मीटर आप लंबा रख कर सकते हैं, उसको 1.25 मीटर उसकी चौड़ाई कर सकते हैं, और बीच में से क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है इसलिए बीच में से उसकी क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम 1.20 तक रख सकते हैं मीटर तक उसकी, ताकि जो व्यक्ति है जो किसान भाई हैं हमारे वो अंदर बैठ के जो भी उसके अंदर जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं उनको कर सकते हैं वो।
1: तां दिक्खा किसान साथियों, सुनिए जानकारी कि बरसाती दे मौसम च सब्जियां दी खेती बाड़ी कियां करनी, कनसन तो आई इस दे बाद जेड़ा साहिब बेला होया
0: लोकगीत ना
1: हाँ, तां वा सुन दे लोकगीत।

जी किसान साथियों, इस लोकगीत के बाद तुहें ले चलना है मौसम दी तरफ, कजो कि जे मंडी भाव दी गल करिए तां अज हुंदा रविवार, कने सब्जी मंडी विच हुंदी छुट्टी तां सह उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन मौसम ने जरूर तुसें रूबरू कराना है। तां मौसम दी गल करिए तां मौसम विच जे हिमाचल दी गल करिए तां मानसून ने दोबारा जिहड़ी रफ्तार सह पकड़ी लई है, कने मौसम विभाग ने 1 जुलाई ते 3 जुलाई तक भारी बरखा यानी कि येलो अलर्ट जारी करी दिया है। कने आज 28 जून है, आज भी राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में हल्की कने मध्यम बरखा हुई है, तिथु तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जिहड़े मैदानी इलाके ने इतू फिरी थोड़ा फर्क रही है, बरखा नहीं हुई उतनी। कने जियां अगला दे पहली ते दसी हुए मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक बरखा, तां जरूर तुहां अगर जे खेतीबाड़ी दे कम तुहां दे थोड़े इस वजह ते रुका देन तो तुहां सिर्फ ये 1-2 दिन की गल है तो तुहें जरूर राहत मिलनी है। कने बरखा जे ज़्यादा होगी तो इस विच तुहां अपना भी ध्यान रखना है, क्यों कि हुण गां बरसाती वाला ही रुत्त आने वाली है, तो बरसाती थोड़ा जिहा बरखा ते हयों संभली के भी रहना पौंदा। कने जितने भी आते हिमाचल विच घूमण आउंदे ने बाहरी पर्यटक या कोई भी, तिन्हां ने भी एक आग्रह है भी इसे कुथी खड्डा नालों दे अखे वखे ना जान, क्यों कि जिहड़ी हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण कई बार खड्डा का स्तर कुछ होर हुंदा, कने जालू सहित इत्थों नौना लगी पौंदे या थोड़ी देर मस्ती करना लगी पौंदे तां पहाड़ा विच कलू बरखा हुई आ इहदा पता नहीं लगता, कने एकदम जिहड़ा बरखा का पानी इस खड्डा विच उतरी आंदा, कने जल स्तर जिहड़ा सह वधी आंदा। तां इस गल्ला दा सारे ध्यान रखन, खास करी अहां दे हिमाचली भी, क्यों कि कई अहां दे विचारे पहाड़ी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में डंगरा पशुआ चारा दे हुंदे तां सह भी खड्डा दे अंडे कंडे ही हुंदे, तो थोड़ा जिहा इन्हां दिनां च ध्यान रखना, क्यों कि हुण बरखा का स्तर आस्ते आस्ते वधना ही है, घटना नहीं है, तो सारे ही सचेत रहन, कने अपने घरे दे खेतीबाड़ी दे कम कार उस हिसाबे ने करदे रहन। समय दी घड़ियां बोला दियां पई हुण बड़ा होई आ, कने हुण आस्ते आस्ते लिया तुहां विराम, तो तुहें ओ जांदे जांदे हां दसना भी कार्यक्रम प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह कने तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया दा। हुण शन्नो ताई जो दयानुमति, अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले, सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
5: अच्छा, इसमें क्या होगा?
4: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
5: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
5: अच्छा,
4: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
6: हाँ,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान राष्ट्रहित में की गई अपील पर एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आज सोलन जिला में कंडाघाट क्षेत्र में सकोड़ बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में स्थानीय लोगों व विद्युत विभाग के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इलाके में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि IGMC में लिफ्ट खराब पड़ी है, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला सहित प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में भी अव्यवस्था के कारण मरीज व तीमारदार परेशान हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में नई सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा

0: परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की धार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार ने सिरमौर जिला के संगड़ाह में पोलियो मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाने रखना है। शिमला जिला में 50,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाई गई। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मान महत्व देना आवश्यक है ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। धर्माणी ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात से सभी कार्य करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उप प्रधानों सहित BDC व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए काम करने पर बल दिया।
1: अगले 5 साल आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरो। आप जनता को वही मान सम्मान दोगे जो जनता ने आपको दिया। सभी काम करने संभव नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के काम को ध्यान से सुनना और अपना यथासंभव प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: पर्यटन विभाग ने कांगड़ा जिला की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पौंग झील में इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने सहित रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
2: इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सके और लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव, और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के उसको करे, और जितनी भी साइनेजेस है चाहे वो लेक में जिस तरह के कोई हादसा ना हो उसकी देखरेख के लिए जो भी नेसेसरी मैन पावर रखनी है, जो भी साइनेजेस लगानी है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी करेगी, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है।
0: राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की 400 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। समापन अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान राष्ट्रहित में की गई अपील पर एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक आधार पर भरा जाना है। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, यानी कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करवा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों आपको याद दिला दें, रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विख्यात निर्देशक सत्येन बोस की फिल्मों से चुनिंदा गीत।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजने को है, लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुरदास मान के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम बीट्स रिलीज किया जाएगा।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिमबीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। हिमबीट्स में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको जानकारी देने के साथ साथ जागरूक करें। और जानकारी के बाद हिमबीट्स के साथ में आज हम आपको बताएंगे कि पराली को जलाने से किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। जब फसलों की कटाई की जाती है तो उसके बाद फसल का कुछ हिस्सा खेतों में ही शेष रह जाता है। फसल के इस अनुपयोगी भाग को पराली कहते हैं और किसान नई फसल की तैयारी में इस पराली को जला देते हैं। पराली को जलाने से कृषि, पर्यावरण और सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पराली को जलाने से वायु प्रदूषण होता है और ये औद्योगिक और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। पराली जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो आंखों में जलन से लेकर गंभीर हृदय और सांस संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। साथियों, इसके समुचित प्रबंधन की बात करें तो पशु चारे के रूप में पराली का उपयोग तो होता ही है, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट खाद और पैकिंग सामग्री के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए पराली के वैकल्पिक प्रयोगों पर जोर देने की आवश्यकता है। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, हिमालय की गोद में बसा अद्भुत प्रदेश है हिमाचल। यहाँ की सुंदर शांत वादियाँ सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ पानी और शुद्ध हवा देने का काम भी करता है। यही वजह है कि इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के वन हमारी जीवन रेखा है और प्रदेश सरकार इस वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वन आवरण को बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वन क्षेत्र के विस्तार से जैव विविधता का संरक्षण, मिट्टी और जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी। इस पहल से प्रदेश के हरित आवरण में विस्तार के कार्य में सामूहिक सहभागिता से ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी सृजित होंगे। 26-27

0: जा रही है। इससे जंगल भी बचेंगे और युवाओं को आजीविका का साधन भी मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम मिशन 32% योजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रीन कवर को वर्ष 2030 तक 29.5% से बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य रखा है।
1: प्रदेश सरकार ने औषधीय पौधे रोपित करने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किए हैं, जिसके तहत ग्रामीणों की सहायता से औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथियों, जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य में 2 बायोचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अवैध खनन को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल सरकार ने खनिज नीति बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ साथ भूस्खलन, नदी कटाव और पर्यावरण क्षति को कम करना है। राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत अब राज्य में कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और हरित विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 38,000 टैक्सियों को ई टैक्सियों में परिवर्तित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। देश के ग्रीन फ्रंटियर के रूप में हिमाचल राष्ट्रीय विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान अदा कर रहा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश को हर वर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए की पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके अनुरूप राज्य को कोई पर्याप्त आर्थिक प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। साथियों, ब्लू इकोनॉमी यानी जल संसाधनों की बात करें तो मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य की ब्लू इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। प्रदेश मत्स्य पालन क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 13,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद राज्य को मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त BBMB से राज्य को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदैव प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखा है तथा उनकी प्रभावी ढंग से रक्षा सुनिश्चित की है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित की मजबूती से पैरवी की और पिछले 8 वर्षों से परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब भारत सरकार ने परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली लगभग 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। ये बिजली परियोजनाओं में राज्य के वैध अधिकार, लंबित बकाया राशि और अन्य हितों की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी जीत है। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में ही छोटे छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाने होंगे। अपने घरों में प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी की बचत, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। यहाँ हमारा दायित्व केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उसके पूर्ण रूप से विकसित होने तक उसके उचित देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस अभियान में युवाओं और बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में सौर ऊर्जा से लेकर वन विस्तार और जल संरक्षण की दिशा में किए गए सतत प्रयासों से हिमाचल हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के समावेशी विकास के प्रयास फलदायी साबित हो रहे हैं और हरित प्रदेश सुरक्षित प्रदेश की अवधारणा को प्रदेश सरकार हिमाचल के लोगों के सहयोग से साकार कर रही है। श्रोताओं, हिमबीट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक के साथ साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट्स।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

दोस्तों हम आपको याद दिला दें, रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा विख्यात फिल्म निर्देशक सत्येन बोस पर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिलीज किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत।

0: और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमेनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को

0: दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर

0: विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat waves.

सतीन बोस सिने जगत की एक ऐसे फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं की फिल्मों का निर्देशन किया। सतीन बोस का जन्म 22 जनवरी 1916 को कोलकाता में हुआ था। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने वर्ष 1949 में बांग्ला फिल्म परिवर्तन का निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। इसके बाद सत्येन बोस ने इसी फिल्म का हिंदी रूपांतरण किया। ये फिल्म 1954 में आई। फिल्म थी जागृति, जो हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई।

जागृति फिल्म उन दिनों फिल्म प्रेमियों की भावनाओं को जागृत करने में पूरी तरह से कामयाब रही। सत्येन बोस ने कुछ फिल्मों के लिए लेखन कार्य भी किया। हिंदी और बांग्ला के अलावा उन्होंने कुछ अन्य भाषाओं में भी फिल्में दी।

0: काल के।
1: निर्देशक सत्येन बोस ने सिनी जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने रेलवे और बैंक में अपनी सेवाएं दी, लेकिन बाद में फिल्मों के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। अपनी फिल्मों के जरिए सत्येन बोस ने समाज को अनेक संदेश भी दिए।

जागृति सत्येन बोस के निर्देशन में बनी पहली ही हिंदी फिल्म ने उन्हें कई पुरस्कार दिलवाए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। सत्येन बोस ने जागृति, चलती का नाम गाड़ी, 1960 में आई मासूम, दोस्ती, रात और दिन, आंसू बन गए फूल, वापस, जीवन मृत्यु, पायल की झनकार जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।

9 जून 1993 को 77 वर्ष की आयु में मुंबई में सत्येन बोस का देहांतवास हो गया। सत्येन बोस आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निर्देशन में बनी फिल्में आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था विख्यात फिल्म निर्देशक सत्येन बोस पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों की महफिल। गीतों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म के इस गीत के साथ। संगीत अनु मलिक का है। आहा।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिर तेरी कहानी याद आई। फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लीजिए सुनिए नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलीशा शेनाय और उदित नारायण की।

नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर समीर का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था फूल और कांटे फिल्म से। आवाजें थीं अलीशा चिनॉय और उदित नारायण की। गीतों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार तुषार भाटिया। आई मिलन की रात, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का है, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए उत्तम सिंह की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में। ये गीत हमने लिया है दुश्मन फिल्म से।

दुश्मन फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गीतों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों की महफिल। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से रविवासरीय संगीत सभा रिली की जाएगी।

0: अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुओसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह, इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस, दिल्ली एंड अजराड़ा घरानास। Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as ladant ka baj, of which Pandit

Kanda,

कत कत टिक धान कत भजन कत धड़न धट धान कत गदिन गिन लगिन तट तागिन तट तागिन तट तागिन तट तान ता दिन न घगे दिन न धाती धा किरधाती धा किरधात दिन न घगे दिन न धाती धा किरधाती धा किरधात दिन न घगे दिन न

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी प्रेजेंट लय विन्यासम ऑन मृदंगम बाय श्री एन एस कल्याण रामन।
2: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एन एस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री एम के आर प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रिनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
2: Sri N.S. Kalyana Raman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers aur Hyderabad Sisters jaise anek prakhyat sangeetajnyon ke saath sangat kiya. Unhone desh ke अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक अकादमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकंपनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक अकादमी।
2: श्री एन एस कल्याण रामन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top-grade artist of Akashvani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani.

0: at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchikamakoti Peetham and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
1: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है.
0: Tonight, श्री एन एस कल्याणरामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम.

0: श्री एन एस कल्याणरामन अपना मृदंगम लय विन्यासम का समापन संकीर्ण चापुताल से कर रहा है।
1: श्री एन एस कल्याणरामन कंक्लूड्स हिज लय विन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापुतालम।

आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत

0: द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India.